0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: इमेजिन दिस, फुल ब्लोन झगड़े का सीन चल रहा है, लड़का चिल्ला रहा है, लड़की चिल्ला रही है, एंड सडनली इन द मिडल ऑफ द गाय स्क्रीमिंग द गर्ल सेज ये न कटी पड़ी. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू टू माय एक्स. हर बार जब हम झगड़ा करते थे, मस्त झगड़ा करते थे, ऐसा लगता था कि झांसी की रानी पार्ट टू मैं ही हूँ. लेकिन जब मैं झगड़ा करते करते मिड वे बोर हो जाती थी, तो आई यूज टू यूज दिस तमिल वर्ड न कटी पड़ी, विच मीन्स हग मी. और वो सडनली ऐसे ना फ्लमक्स हो जाता था कि अभी तो ये मुझसे हिंदी / पंजाबी / बिहारी में लड़ रही है, और अब ये तामिल क्यों बोल रही है. एंड ही न्यू एग्जैक्टली वॉट दैट फ्रेज मैंट, क्योंकि मुझे एक ही तामिल का फ्रेज आता है, न कटी पड़ी, विच मीन्स हग मी बेबी. और वो बेचारा ना ऐसे पिघल जाता था कि मेरी मल्टी लिंग्वेज झांसी की रानी, तुझे प्यार करूँ, तुझे हग करूँ, तुझसे झगड़ा करूँ, समझ ही नहीं आता तेरे साथ क्या क्या करूँ. ऑन दैट नोट, अगर आप भी मेरी तरह एक बहुत ही शातिर लड़ाईबाज इंसान हो जो मिडल ऑफ द लड़ाई करते करते खुद ही बोर हो जाता है, वाई डोंट यू हिट मी अप. लेट्स टॉक अबाउट दिस बीमारी ऑफ योर्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाटएवर यू डू.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
3: बीप। अरे बोल कौन रहा है।
4: सर ये वाला भेजने बीप।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेजने सर बीप।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
3: अरे बावले हो गए हो क्या।
4: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
3: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट वाला।
3: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
3: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: सर ये वाला ठीक है बीप।
3: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
3: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
2: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
4: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
3: अरे भाई किसको भेज दिया?
4: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
3: अबे ओ पागल मारे, ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: ये पागल।

0: Mitchie.
1: R-O-C-H-I-E.
2: Roshi, Roshi.
0: Mitchie Roshi.
3: Only on Radio Mitchie New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
4: मम्मी को लगता है कि आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज यू आर हिटिंग ऑन योर ट्यूशन टीचर. आपका उसके साथ एक, एज माई नानी कॉल्स इट, अफेयर चल रहा है. ऐसी अश्लील बातें आप किसके साथ शेयर करोगे?
5: द सीक्रेट बॉक्स.
4: द राइट आंसर टू दैट इज मेरे साथ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वट एवर योर सीक्रेट कन्फेशन इज. मैं सिर्फ आपको रोशिफाई करना चाहती हूँ और थोड़े से मजे लेना चाहती हूँ. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
6: Hi, how are you?
4: I am very good, but you are obviously a very naughty person.
6: Totally.
4: क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था कि आपने कैसी गंदे काम किए हैं. But why don't you tell me, like, संक्षिप्त में कहते हैं कि एग्जैजरेट करके क्या कहते हैं, मतलब तसल्ली से बताओ यार कि कर क्या रहे हो आप अपनी जिंदगी में.
6: So what I'm doing right now is, हाँ. So मेरा 6 years का रिलेशन है, हुँ. But somehow मेरा बॉयफ्रेंड अब फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा चला गया है. दो आई लव हिम अ लॉट, बट आपको पता है वुमेन नीड्स तो एक चीज है ही है. तो व्हाट आई एम डूइंग नाउडेज इज आई एम जस्ट डाउनलोडिंग डेटिंग ऐप ऑन वीकेंड, हैविंग फन, एंड फिर मंडे को अनइंस्टॉल करके बैक टू बेसिक्स.
4: अच्छा, तो एक बात बताओ, ये वीकेंड पे आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलता है कि बंदी गायब है फॉर लॉन्ग आवर्स एंड यू नो फोन इज अनरीचेबल, फोन करता तो उठाती नहीं है, उसका क्या करते हो?
6: नहीं, मतलब he trusts me a lot, so
4: oh, how nice.
6: That I'm hanging out, so yeah,
4: चल जाता है यार. अगर बंदा ट्रस्ट करे then it becomes easier to cheat. ऐसे सिचुएशन में क्या मैं आपके लिए रोशिफिकेशन कर सकती हूँ या एक और डेटिंग ऐप सजेस्ट कर सकती हूँ? Which one of the two would you prefer?
6: Anything, जो आपको पसंद है इस वक्त.
4: क्या बात कर रही है? अच्छा, मैं तुझे ना रोशिफाई कर देती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर बैड कर्मा, हियर यू गो. Babe, you are absolutely killer. It was really nice talking to you. और अगर आपकी भी जिंदगी में ना आपने ऐसे कोई गंदे काम किए, मतलब बॉयफ्रेंड कनाडा में, ही ट्रस्ट यू सो मच एंड यू आर लाइक, हाँ तो ठीक है, ट्रस्ट को वीकेंड पे साइड पे रख देते, दैट डजंट काउंट ऑन वीकेंड्स, डज इट? आई वांट टू हियर योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, बट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: खत्म।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये स्पाइडर वेब तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं पुष्पा आई बेट यू डिड नॉट नो दैट कपल इयर्स अगो एक्चुअली ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो आई वाज डेटिंग दिस गाय और हम ना जब भी घर पे हैंग करते थे हमारा बहुत झगड़ा होता था एंड देन आई रियलाइज कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी देन काम करने वाली दीदी हिना दीदी वॉज अ टेरेबल काम करने वाला इंसान और वो जगह जगह मकड़ी के जाले छोड़ देती थी नाउ यू विल वंडर कि इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे से क्या लेना देना लेना देना है मिलॉर्ड क्योंकि फंगशुई के हिसाब से अगर आपके घर में

के जाले हैं, दैट विल कीप द नेगेटिव एनर्जी ट्रैप्ड, इट विल मल्टीप्लाई इट एंड दैट विल रिजल्ट आपके रिलेशनशिप में झगड़े बढ़ने से. समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यार? तो बेसिकली स्पाइडर वेब्स हटाओ, रिलेशनशिप्स में झगड़े कम हो जाएंगे. मुझे थैंक यू बोलने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: देखिए हम ऑलरेडी बहुत ही नर्वस हैं. हम अपनी पहली डेट पर जा रहे हैं और हम एक बहुत ही फैंसी कॉफ़ी शॉप पर जा रहे हैं, लेकिन एक से दूसरी कॉफ़ी का डिफरेंस नहीं पता है. ज़रा मदद करके बता दीजिए प्लीज.
0: रोशी के डीएम से.
2: This has to be the sweetest DM anyone has ever sent me. Mohit, I am totally going to help you figure out your coffee game. अगर आप पहली बार एक बहुत ही fancy coffee shop पर अपनी babe को लेकर जा रहे हो and you don't want to come across as really ignorant of coffees, let me just tell you मोटा मोटा. cappuccino वो coffee होती है जिसमें steamed milk होता है और थोड़ा सा black coffee होता है, ठीक है? तो ज़्यादा इसमें दूध होगा और एक shot of espresso होगा. espresso है एक shot काली कॉफ़ी. लाते जो है उसमें एस्प्रेसो है, लेकिन उसमें जो दूध की मात्रा है वो ज़्यादा है. यूजुअली आइस लाते टेस्ट अ लॉट लाइक कोल्ड कॉफ़ी. ठीक है, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर रही. अगर आप मोका ऑर्डर कर रहे हैं तो मोका का मतलब है कि इसमें एक चॉकलेट फ्लेवर भी होगा. तो कॉफ़ी है, दूध है और चॉकलेट का फ्लेवर है. अमेरिकानो ऑर्डर कर रहे हैं तो इसका मतलब है एस्प्रेसो का एक डार्क कॉफ़ी का शॉट है और उसके ऊपर बहुत सारा गर्मा गर्म पानी है. और अगर आप आयरिश कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें विस्की भी होगी. सो इफ़ यू आर समवन हूज़ अ टी टोटलर, आप आयरिश कॉफ़ी से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए. अगर आप फ्लैट वाइट ऑर्डर कर रहे हैं तो ये है, इसमें कॉफ़ी है और कैपेचिनो के बनस्पत इसमें कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें स्टीम मिल्क भी होता है और इसमें थोड़ा सा फोम भी होता है. तो आपके लिए बस इतना कॉफ़ी का जानना इनफ है. आपकी स्माइल इतनी चार्मिंग लग रही थी मोहित, मैंने आपके डीपी में देखा है दैट वो लड़की कॉफी

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: What happens जब आपकी शादी भी नहीं काम करती है और आपका उसके बाद वाला रिलेशनशिप भी नहीं. It's pretty heartbreaking and I think that's what's happening with Raj, जिसने मुझे मैसेज लिखकर भेजा. I'm just about to call him, but अगर आपकी जिंदगी में राज की तरह कोई भी प्रॉब्लम है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर राज है. हाय राज.
3: Hi.
2: कैसे हो आप?
3: As far as life is being concerned, it's being very puzzled. मैंने अपनी सारी स्टोरी ऑलमोस्ट आपको बताई दी.
2: हाँ, मैंने आपका जो इंस्टाग्राम पर पढ़ा था कि आपकी वाइफ के साथ सेपरेशन हुआ 5.5 इयर्स से एंड अभी डिवोर्स हुआ है ना आपका?
3: हाँ, जस्ट अभी मतलब रिसेंटली ऑन पेपर्स अभी हम स्लाइडली बिट जो प्रोसीडिंग्स हैं
2: right.
3: वो एज ऑन गॉन है. फिर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट नेक्स्ट कमिंग मंथ मैं सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी.
2: अगले महीने आपका डिवोर्स हो,
3: मतलब एक लास्ट जो साइन रहता है ऑफिशियली.
2: हाँ,
3: और वो बस हो रहना.
2: और इस दौरान में यू हैव एक 8 साल की बेटी और इस 5.5 इयर्स ऑफ सेपरेशन में आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी. अच्छा, ये आपकी जो दोस्त अच्छी बनी एंड हुम यू इवेंचुअली फेल इन लव विद एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैपेंड, ये जो आपकी दोस्त बनी थी, ये कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिली थी आपको या आपको इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे मिली थी?
3: नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं. एक्चुअली आई वाज यूज्ड टू गो इन माय बैंक, शी इज वर्किंग इन अ बैंक.
2: अच्छा.
3: और मेरा वो अकाउंट जनरली हैंडल करती थी, तो जनरल डिस्कशन करते करते वी हैड हम लोग अच्छे दोस्त बन गए. तो दोस्ती बढ़ते गई. वो मेरे घर पे भी आई हुई है, मेरी फैमिली से भी मिली हुई है. मेरी डॉटर भी उसको अच्छी तरह से जानती है एंड शी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज कि हाँ, ये उसका नाम है. मैं अहमदाबाद गया हुआ था तो मैंने उससे बातचीत की कि यार देख, मुझे लाइक हो गया. तो बोले कि मैंने कभी इस चीज को लेके थॉट वो लेके नहीं आई इस चीज को लेके. हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड और वी आई यूज टू कॉल हर बेस्टी. तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मैं सोच, कोई दिक्कत नहीं, यू टेक योर टाइम. देख, जहां तक मेरी डॉटर का इश है तो डॉटर मेरे साथ ही रहती है. सो ऐसी चीजें चलती रही. तो उसके बाद थोड़ी बहुत बीच में बातचीत हो रही थी हम लोगों की एंड हम जब भी पहले विश करते थे गुड मॉर्निंग, वी यूज टू से गुड मॉर्निंग बेस्टी, आई लव यू. And she used to give me the same reply. Then, अभी suddenly last November से रोशी ये चीज हुई कि बहुत conservative sort of चीज हो गया. भाई उसके घर वाले उसकी शादी की बात कर रहे हैं, ठीक है. बट कभी मूड खराब हो जाता था, कभी किसी चीज का रिप्लाई नहीं आता था. मैं पूछता रहता था कई बार, तो वो जवाब नहीं आता. तो फ्रस्ट्रेशन होती है. हम किसी से कई 10 बार फोन करे, उससे चीज कुछ पूछे, कोई जवाब नहीं आता. तो हमको लगता है कि क्या हम बेवकूफ है या हमारे पास हम वेले हैं. इन दिनों में तो उसने अपना जो नंबर था उसने नंबर भी बदल दिया, मुझे भी नहीं पता पड़ा.
2: राज, एक बात बताऊं, मेरे हिसाब से द गर्ल इज गॉन, शी डज नॉट केयर फॉर यू, शी इज ट्राइंग टू मेक योर लाइफ मिजरेबल. वो आपको बताने की कोशिश करी कि आपके बिना कितनी खुश है. आप प्लीज मूव ऑन कर लो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि कई बार इन स्पेशली इन इंडिया हम इतने इमोशनल होते हैं कि हम अपने प्यार की रिस्पेक्ट ही भूल जाते हैं, अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं.
3: That's what I'm, taking this as a thing.
2: I think you should. And the fact of the matter is ki, okay, your marriage didn't work. Okay, this relationship didn't work. But iska ye matlab nahi hai ki aap baith ke us insaan ka intezar karenge jo aane ka intention hi nahi rakhta hai. Aage badho. Zindagi is very beautiful. Focus on your daughter. Aur jab pyar milna hoga na, Raj, it will walk right into exactly. To fir tab tak aap aur main to hain.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने कभी अपने पार्टनर के साथ गार्डनिंग ट्राई करी है? सो अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये ना गार्डनिंग कितना मैसी होता है, हाथ गंदे हो जाते हैं एंड देन यू गेट ऑल स्वेटी और हर जगह मिट्टी मिट्टी लगी होती है. टिल आई एक्चुअली ट्राइड गार्डनिंग विद माय देन पार्टनर एंड हम दोनों के हाँ कपड़ों में मिट्टी लगी थी, मेरे तो नेल्स में भी मिट्टी घुस गई थी, बट हमने इतना हंसी मजाक किया एंड देन यू नो वी टुक टर्न्स टू टेक केयर ऑफ द प्लांट. एक हफ्ता वो मेरे साथ होता था प्लांट, एक हफ्ता उसके साथ होता था एंड दैट एक्चुअली टर्न मी इंटू अ फुल टाइम गार्डनर जो मैं आज की डेट में हूँ. ना कि सिर्फ आपको ये कनेक्ट करता है विद द अर्थ, विद द फीलिंग ऑफ यू नो अ लॉट ऑफ लव फॉर प्लांट्स एंड नेचर, लेकिन ऐसा करने से अगर आप एक ऐसे इंसान हो हु हैज़ अ कपल ऑफ एंग्जाइटी अटैक्स या अ कपल ऑफ पैनिक अटैक्स एवरी नाउ एंड देन, आपकी ये जो एंग्जाइटी अटैक्स हैं बहुत लेवल तक रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज प्लेइंग विद द अर्थ इज एक्चुअली एन एक्ट ऑफ ग्राउंडिंग योर एनर्जीज इज वेल. इसे ट्राई करके देखो एंड वॉट बेटर डे टू स्टार्ट दैन टुमारो, यू नो, बिकॉज वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग आवर लव फॉर मदर अर्थ एंड व्हेन यू डू दैट एंड रियलाइज इसमें कितने मजे आते हैं. Why don't you hit me up Insta पर या FB पर to tell me about it. मेरा नाम है Mirchi Roshi, नाम के स्पेलिंग है Rochie. So go ahead, tell me your story, morning glory and whatever you do, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो Mirchi, it's hot.

आगे आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: हमारे घर में बचपन से एक जोक है कि रोशी के पास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हर पॉसिबल एडिशन ऑलरेडी है. नाउ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ रोमांटिक क्लासिक नॉवल और बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ा था, तो तब से जब भी मुझे कहीं पर इसका एक वर्जन मिल जाता है जो मेरे पास नहीं है, सो द बुक रिमेन्स द सेम बट पब्लिशर्स बदलते हैं, सो द कवर काइंड ऑफ चेंजेस. तो मेरे पास 5 ऐसे हैं और क्योंकि करण इस बारे में हर बार जोक करता है मेरा भाई. One of my exes, when he found out that मुझे Pride and Prejudice इतनी बेहद पसंद है, मेरे birthday पर he actually went to I think 5-6 पुरानी bookstores और उसमें एक बहुत ही vintage edition of Pride and Prejudice उसे मिला, जिसके उसने बहुत पैसे दिए, way more than एक current normal bookstore में जो नया version होता उसके. He wrapped it up in newspaper, wrote a love poem marker से on that newspaper which he wrapped it in and then gave it to me. And I can't begin to tell you कि वो मेरे लिए कितना spectacular, precious birthday present है of all times. My point is, अगर आपकी girlfriend या boyfriend are an avid reader, then उनकी जो favorite किताब है ना, उसका ही version from a vintage store ढूंढने की कोशिश करो and you will be amazed with the way they read.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मम्मी को लगता है कि आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज यू आर हिटिंग ऑन योर ट्यूशन टीचर. आपका उसके साथ एक एज माय नानी कॉल्स इट अफेयर चल रहा है. ऐसी अश्लील बातें आप किसके साथ शेयर करोगे?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: द राइट आंसर टू दैट इज मेरे साथ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वट एवर योर सीक्रेट कन्फेशन इज. मैं सिर्फ आपको रोशिफाई करना चाहती हूँ और थोड़े से मजे लेना चाहती हूँ. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
4: Hi, how are you?
2: I am very good, but you are obviously a very naughty person.
4: Totally.
2: क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था कि आपने कैसी गंदी काम किए हैं. But why don't you tell me, like, संक्षिप्त में कहते हैं कि exaggerate करके क्या कहते हैं? मतलब तसल्ली से बताओ यार कि कर क्या रहे हो आप अपनी जिंदगी में.
4: So what I'm doing right now is, हाँ. So मेरा 6 years का relation है, हुँ. But somehow मेरा boyfriend अब further studies के लिए कनाडा चला गया है. दो आई लव हिम अ लॉट बट आपको पता है वुमेन नीड्स तो एक चीज है ही है. तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ डेज इज आई एम जस्ट डाउनलोडिंग डेटिंग ऐप ऑन वीकेंड हैविंग फन एंड फिर मंडे को अनइंस्टॉल करके बैक टू बेसिक्स.
2: अच्छा तो एक बात बताओ, ये वीकेंड पे आपके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलता है कि बंदी गायब है फॉर लॉन्ग?
0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा.
0: Radio Mirchi, it's hot.

है दिल तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल ओफो हिप्स लिप्स आईज थाइस सब गजब सब गजब सब गजब

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: सुधांशु ने मुझे इतना क्यूट मैसेज लिखकर भेजा फेसबुक पे. ही वॉज लाइक, आप हमेशा कहते रहते हो कि डेटिंग एप्स पर अच्छी सी अमेजिंग सी बायो लिखो और फिर आपको राइट स्वाइप्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा जिसे नहीं लिखना आता, मैं नहीं हूँ कॉपी राइटर, मुझसे दो शब्द नहीं लिखे जाते, क्या मुझे कभी राइट स्वाइप्स नहीं मिलेंगे? आई वॉज लाइक, सुधांशु, आई ऑलवेज हैव एन आंसर टू दीज क्वेश्चन. सो अगर आप अपना बायो नहीं लिख सकते हो बिकॉज जस्ट यू आर जस्ट चैलेंज्ड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, देन चार या उससे कम फोटोज में, यानी कि तीन या चार फोटोज में आपको अपनी पूरी स्टोरी कह देनी है. मतलब इफ यू हैव अ डॉग, देन आपकी फोटो विद योर डॉग. अगर आप गिटार बजाते हो तो अगली फोटो में आप और गिटार बजाते हुए. इफ यू डू कैरियोकी तो एक फोटो जिसमें आपने माइक पकड़ी हो. बेसिकली चार फोटोज में एक लड़की को समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द पैकेज दैट शी इज गेटिंग इफ शी राइट स्वाइप्स यू. तो अपने आप को समझो एक हॉलीडे पैकेज, अपने डेटिंग प्रोफाइल को समझो एक ब्रोशर, और उन चार फोटोज में वो सब कह दो जो आप लिख नहीं सकते हो. एंड सुधांशु, आई प्रॉमिस यू दैट इट विल वर्क, एंड वंस इट डज आई होप दैट आपको सच्चा प्यार मिल जाए, क्योंकि जिसके

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो हेलो, वेलकम। आज मैंने पता है क्या सोचा है कि मैं आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश करूंगी। आज एक ऐसी मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, मेरे मम्मी पापा का बताना है कि ये फिल्म बहुत चली थी उनके जमाने में, एंड लोग ना बार बार इस फिल्म को देखने जा रहे थे। नंबर वन, ये उस टाइम की इनिशियल जो मिस्ट्री फिल्म बन रही थी उनमें से एक थी। नंबर टू, इसमें बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन जो कई सारी और फिल्में कर चुकी थी वो थी, एंड हर नेम वाज साधना। मनोज कुमार थे इसमें, इट वाज डायरेक्टेड बाय राज खोसला, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो भाई इसकी ढेर सारी बातें होंगी, एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे गाने हैं जो लता जी ने गाए हैं, मैं आपको सुनाऊंगी एक एक करके। उसके लिए आपको क्या करना है, सिट बैक एंड रिलैक्स, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा सुनो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बॉस को कोई आइडिया पसंद नहीं आया हो जो तुमने दिया हो, बट फिर भी उसने तुम्हें इतनी फ्रीडम दी हो कि अच्छा जाओ भाई कर लो अपने मन की, फिर देखते हैं, एंड फिर उसके बाद तुम्हारे आइडिया ने झंडे गाड़ दियो? ओहो, व्हाट अ प्राउड फीलिंग है ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और ऐसा ही हुआ था एक गोल्डन गाने के साथ फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी जिसकी आज बातें हो रही है। सो ये गाने की पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को 5 बार रिजेक्ट किया प्रोड्यूसर NN सिप्पी साहब ने एंड डायरेक्टर राज खोसला साहब ने, और बार बार इस गाने की कॉम्पोजिशन बना करके ना इसको पेश किया जा रहा था। अब हुआ ये कि मदन मोहन, हु लव्ड द सॉन्ग, वांटेड कि कुछ भी करके ना इस गाने को रख लिया जाए, रिटेन कर लिया जाए। तो उन्होंने 6 कॉम्पोजिशन बनाई। जब राज खोसला ने कहा अच्छा भाई ठीक है तुम्हें बहुत पसंद है चलो एक बार और बना के दिखा दो, फिर क्या हुआ जब 6 कॉम्पोजिशन सुनी राज खोसला ने, उन्हें तब भी नहीं पसंद आया। बट फॉर्चुनेटली बिकॉज दिस सॉन्ग हैड टू बी अ मैसिव हिट, उस दिन स्टूडियो में आ गए मनोज कुमार और उन्होंने इस गाने को सुन लिया। मनोज कुमार ने कहा कि दादा ये तो बेहद खूबसूरत गाना है, ये आगे जाकर के जैसे ही रिलीज होगा ना ये गाना मैसिव हिट होगा। इस गाने को रिटेन किया गया एंड उसके बाद रेस्ट वॉज हिस्ट्री। वो कौन सा गाना है? नहीं नहीं नहीं, आपको मेरी आदत तो पता है, मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, थोड़ा सा ना मैं आपको सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ जिससे आई हैव द श्योरिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स। तो यहीं पे बने रहो श्रेया के साथ ऑन पुरानी जींस, मैं बताऊंगी किस गाने की बात हो रही है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट गाना।

Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

थोड़ी देर पहले आपको मैं सस्पेंस में छोड़ के गई थी, अब बताती हूँ पूरी कहानी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। इस फिल्म का एक गाना जो मुझे क्या पूरी दुनिया को बेहद पसंद है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेट्रो फैन हैं तो ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में डेफिनेटली होगा। लेकिन इस गाने के पीछे ना एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है। ये गाना जब कंपोज हुआ और कंपोज करने वाले थे मदन मोहन साहब, तो वो ना एनएन सिप्पी जो कि प्रोड्यूसर थे ऑफ वो कौन थी के, एंड राज खोसला डायरेक्टर, उनके पास जब लेकर के गए ना, इन दोनों को ही इस गाने की कॉम्पोजिशन नहीं अच्छी लगी। एंड नॉट जस्ट वन टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल फाइव कॉम्पोजिशंस वर रिजेक्टेड बाय देम। तो फिर ना राज खोसला जो कि भाई ऑफकोर्स यू नो डायरेक्टर थे, जानते थे कि एक आर्टिस्ट कैसे काम करता है, उन्होंने मदन मोहन से कहा कि अगर तुम्हें ये गाना इतना ही पसंद है चलो एक और ट्राई कर लो। मदन मोहन ने एक और बार इसको कंपोज किया। एक और बार जब ये सर्व किया गया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, उन दोनों ने इसको फिर से मना कर दिया। अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली क्योंकि ये गाना इतना ह्यूज हिट होना ही होना था, इसकी डेस्टिनी थी एंड ये इतना खूबसूरत था कि उस दिन मनोज कुमार स्टूडियो में आ गए। मनोज कुमार ने जब ये गाना सुना उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये इतना खूबसूरत गाना है, इसको डेफिनेटली रखा जाए इन द फिल्म। फिर इस गाने को लता जी ने गाया और ये गाना आज तक हम सबकी प्लेलिस्ट में है। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू एंड द सॉन्ग इज ओहो। लता जी की आवाज में पूरा गाना आप नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये स्क्रिप्ट थी किसी और की, बनाने वाला कोई और निकला। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज ना बात हो रही है द मैसिव हिट, द सस्पेंस फिल्म या फिर हॉरर फिल्म कह लो उस जमाने की, वो कौन थी। आपको पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ पूरी कहानी। सो 1950s में गुरुदत्त साहब ने एक फिल्म लॉन्च करी जिसका नाम था रास। इस फिल्म में थे सुनील दत्त साहब, वहीदा रहमान एंड रहमान जी। इट वाज सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय शशि भूषण जी। पता नहीं क्या हुआ कि 10 दिन के बाद गुरुदत्त साहब ने फिल्म की शूटिंग रोक दी। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट पे फिर से काम किया और इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट में सुनील दत्त को नहीं बल्कि खुद को रखा। फिर से इसका नाम रखा गया रास। सो नाउ दिस टाइम वहीदा रहमान थी, रहमान थे और गुरुदत्त साहब थे। 12 रील्स इस स्क्रिप्ट की, यानी फिर इसी फिल्म रास की शूट हो गई। एंड देन अगेन कुछ हुआ कि गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को रोक दिया। एट दैट टाइम द मूवी वॉज बेस्ड ऑन द नॉवल द वुमन इन व्हाइट। राज खोसला साहब उस समय गुरुदत्त साहब को असिस्ट कर रहे थे एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और उन्होंने तभी सोच लिया कि इस अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट को मैं पूरा करूंगा, मैं बनाऊंगा एक फिल्म। सो ये जो आप वो कौन थी कि हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो स्क्रिप्ट थी ये राज खोसला साहब ने इसी फिल्म से उठाई थी जब वो असिस्ट कर रहे थे गुरुदत्त साहब को, और उन्होंने रास की जगह इसको नाम दिया वो कौन थी। उसके बाद तो भाई बॉक्स ऑफिस पे भीड़ लग गई थी टू वॉच दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ। और श्रेया से अगर 1-to-1 बात करनी है, बिकॉज यहाँ तो सिर्फ मैं बोलती रहती हूँ, दो ऐसी जगह है जहाँ आप भी बोल सकते हो, इस फेसबुक और इंस्टा, RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREY श्रेया विद लव माई हैंडल। वहां पे बता देना जो भी बताना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मनोज कुमार जी को इस फिल्म के लिए लिटरली उनके न्यू बॉर्न बेटे विशाल की दुहाई देनी पड़ी थी डायरेक्टर राज खोसला एंड प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। मनोज कुमार उस टाइम के सुपरस्टार, वो जल्दी जल्दी फिल्मों को हाँ ही नहीं कहते थे, यूज्ड टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। सो इस चक्कर में उन्होंने एक दो साल कुछ काम ही नहीं किया। अब ऐसे में भाई प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब चाहते थे कि किसी तरह वो इस मिस्ट्री फिल्म में आ जाए, वो कौन थी में मनोज कुमार जो है वो लीड रोल प्ले कर ले। मनोज कुमार वॉज लिटिल स्केप्टिकल, ही वॉज डाउटिंग कि मिस्ट्री फिल्म है, थोड़ी सी हॉरर फिल्म है, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। ऐसे में भाई डायरेक्टर राज खोसला ने उनसे कहा कि भाई अभी अभी तुम्हारे घर पर लड़का हुआ है और ये बहुत शगुन की बात है, तुम देखना ये फिल्म करोगे और सुपर डुपर हिट होगी फिल्म। मनोज कुमार ने अपने बेटे विशाल का नाम सुन करके फिल्म को एक्चुअली हाँ कह दी एंड द फिल्म डिड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, यानी वो कौन थी की, और इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। कहीं भी मत जाना, कुछ गानों के उस पार ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस फिल्म, सब बताऊंगी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: ना ना, ना ना।

10 सालों तक इस गाने को किसी फिल्म में जगह नहीं मिली, क्योंकि फिल्म में कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ मदन मोहन साहब अपने खजाने में ये धुन को लेकर के चल रहे थे। 1950s में उन्होंने ये धुन बनाई थी एंड 1960s में जब वो कौन थी आई, यानी ये फिल्म जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, साधना जी की, मनोज कुमार की एंड डायरेक्टेड बाय राज खोसला, तब उनके इस एवरग्रीन गाने को, इस ब्यूटी को एक्चुअली में फिल्म में जगह मिली। मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि आपको लगेगा क्या बात कर रही हूँ श्रेया, ये गाना 10 साल तक बन के रखा हुआ था। अभी बताऊंगी, गाने सुन करके वापस आओ। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मदन मोहन साहब अपने खजाने में इस धुन को लेकर के 10 साल तक घूम रहे थे। कुछ डायरेक्टर्स को उन्होंने अप्रोच भी किया, लेकिन डायरेक्टर्स ने कहा नहीं, ये गाना हमारी फिल्म में तो नहीं चलेगा, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है हमारी फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज वी आर टॉकिंग अबाउट वो कौन थी। इंडिया के सिनेमा के इनिशियल ईयर्स में आई एक मिस्ट्री फिल्म, एक सस्पेंस फिल्म, जिसमें थी साधना जी, मनोज कुमार, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, और इस फिल्म के गाने ओ हो ऑल कंपोज बाय मदन मोहन साहब। तो अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना नहीं है, ये मास्टरपीस है। लता जी ने इस गाने को गाया था, और ये गाना बहुत टाइम तक, नॉट गाना एक्चुअली, बट ये जो धुन थी, समझ ही गए होंगे आप, ये धुन मदन मोहन साहब ने ना बस कंपोज करके रखी हुई थी। जब वो कुछ डायरेक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी फिल्म में तो ऐसा कोई सस्पेंस मिस्ट्री हॉरर वाली सिचुएशन ही नहीं है, तो हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनली 1962 आफ्टर 10 ईयर्स, व्हेन राज खोसला मेड वो कौन थी, इस गाने को अपनी सही जगह मिली। एंड गाना कौन सा है ज़रा गौर फरमाइए। देखो एकदम हॉन्टेड वाली म्यूजिक और साथ में लता जी की आवाज, इट इज नन अदर देन नैना बरसे। कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: खबर।
1: वहाँ के लोकल्स ये देख करके हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लड़की के मुंह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है। पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो इसका ये वाला जो गाना है ना, नैना बरसे रिम झिम जो लता जी की खूबसूरत आवाज में है, इसके पीछे ना एक और कहानी है। सो होता ये है कि कश्मीर में जब ये गाना शूट हो रहा होता है, तो साधना जी को इस पे ऑफकोर्स गाना गाना था, मतलब मुंह चलाना था, लिपसिंग करना था। अब हुआ ये कि लता जी कोई कॉन्सर्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया थी, तो ये गाना डब नहीं कर पाई। तो मदन मोहन साहब ने कहा कि ठीक है, तुम लोग कश्मीर में हो ऑलरेडी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने वोकल्स गा करके भेज देता हूँ और बस साधना से लिपसिंग करा लेना। अब क्या हुआ, क्योंकि ये गाना आउटडोर पे शूट हो रहा था, तो कश्मीर के लोकल्स इकट्ठा हो गए देखने के लिए। और शूटिंग इमेजिन इन 1960s, ये तो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, इतनी सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं चाहिए होती थी, आराम से लोग शूट वूट कर लेते थे। तो लोकल्स ने जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, हीरोइन के मुँह से हीरो जैसी आवाज, यानी लड़की के मुँह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है। इट वॉज अ मेजर टॉक ऑफ द टाउन एट दैट टाइम। फिर खैर जब लता जी वापस आई, उनसे गाना डब कराया गया एंड इट बिकेम अ मैसिव हिट। पुरानी जींस पे इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, मैं हूं श्रेया।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

महबूब खान काफी नाराज हुए प्रेम चोपड़ा से, उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज ना वो कौन थी की बात कर रहे हैं। वेल, इंडिया की इनिशियल हॉरर फिल्म्स कह लो, मिस्ट्री फिल्म कह लो, सस्पेंस फिल्म कह लो, उनमें से आती है वो कौन थी। साधना जी थी, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, मनोज कुमार थे इस फिल्म में। एंड भाई महबूब खान चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा जो इस फिल्म में एज विलेन की तरह लॉन्च हुए वो एक हीरो की तरह लॉन्च होते। सो महबूब खान ने ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बनाई थी एंड ही वांटेड कि वो प्रेम चोपड़ा को ना एक हीरो की तरह पेश करेंगे अपनी आने वाली फिल्मों में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने ऑलरेडी ये फिल्म कर ली और उसके बाद ये फिल्म इतनी हिट हुई, प्रेम चोपड़ा एज विलेन इतने हिट हुए कि भाई उसके बाद तो लोगों ने ना उनको नेगेटिव शेड में ही देखना शुरू कर दिया था। तो उनके पास जितने भी ऑफर आते थे वो एज विलेन ही आते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक चलती रहेंगे। श्रेया के साथ हो आप। और हाँ, अगर बैक टू बैक मुझसे इंडिविजुअल बात करनी है तो फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज RJ श्रेया विद लव। दैट्स RJ SHREYA श्रेया विद लव।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी की एक खास बात थी, वो सिर्फ अपनी फिल्म के हीरो नहीं होते थे, वो अपनी फिल्मों के म्यूजिक में भी बैठते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी डायलॉग्स भी लिखते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी स्क्रिप्ट भी लिखते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड मनोज कुमार यूज टू बी एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन द पिक्चर्स ही यूज टू डू। सो वो कौन थी जब उन्होंने हामी भरी ये फिल्म करने के लिए? इंडिया की इनिशियल ईयर्स की सस्पेंस फिल्म थी, थ्रिल फिल्म थी ये, थ्रिलर कह लो। तो इसमें साधना जी के साथ थे मनोज कुमार, और मनोज कुमार को कुछ सीन्स, कुछ लिखे हुए सीन्स जो कि ध्रुव चैटर्जी ने लिखे थे, वो पसंद नहीं आए थे। तो आपको पता है उन्होंने खुद ये सीन्स लिखे, रीराइट के, एंड दे वर रियली अप्रिशिएटेड। पुरानी जीन्स पे वो कौन थी की बातें विद मी श्रेया। तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मनोज कुमार जी को इस फिल्म की रियल हीरोइन ताज होटल के बाहर दिखती थी, जो उनको काफी बार डरा चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, वो कौन थी। तो इसमें ना एक डॉफ लेडी की जरूरत होती है। अब ना डायरेक्टर राज खोसला उनको ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनको वो मिलते ही नहीं है। तो ऐसे में मनोज कुमार, हु वाज आल्सो द एक्टर ऑफ द फिल्म, और उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ द फिल्म रीराइट भी किए थे, उनको याद आया कि जब जब वो ताज होटल के बाहर निकलते हैं ना, तो उन्हें ऐसी ही एक डॉफ बेगर दिखती हैं, जो कि उनको कई बार डरा चुकी हैं। तो बस उन्होंने सजेस्ट किया राज खोसला को, राज खोसला उनको मूवी के सेट पे ले आए, एंड शी वाज एक्चुअली द हीरोइन ऑफ द फिल्म। क्योंकि फिल्म हॉरर थी, तो इनको देख करके स्क्रीन पे ना बहुत लोग डरा करते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
2: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स में आओ श्रेया के साथ, जाने का टाइम यानी लेट्स हिट द हाईवे। और आज का मेरा हाईवे हिट ना उन लोगों पे है जिनका शायद पहला प्यार पूरा नहीं हुआ, या फिर यू नो अभी भी उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जिनको वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उतर आए लेकिन वो उनको कुछ कह नहीं पाते, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते हैं। उनके लिए ये दिल तो कभी करता होगा और सोचता होगा ना ऐसा।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल,
0: कैसे कैसे ख्याल आते हैं। आज ये गाना
1: बनाया गया है मेरे लिए।
0: करेक्ट, तो शायद कोई खास को ये गाना आज आपकी याद दिलाते हैं। On that note, this is Shreya signing off. We'll see you tomorrow. Or ha, Facebook, Insta pe RJ Shreya with love. That's my handle. Good night.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

மக சனி தனி சகமா. மக சனி தனி சக மக சனி தனி சகமா.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

लगन खिरे बदरा सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन छाया

करूं यह शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। देश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब भाई बहन के बीच के डिस्प्यूट्स फैमिली इक्वेशन को इम्बैलेंस कर देते हैं तो उनसे बाहर निकलकर हार्मनी कैसे बनाएं? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, हाउ आर यू?
3: आई एम वेरी वेरी नाइस। और हाल फिलहाल में मैं एक इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, वो देख रहा था, तो उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे सवाल नजर आया, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। वहाँ पे कॉमेंट्स भी बहुत सारे थे, बहुत वाद विवाद वहाँ पे छिड़ चुका था। तो एक मोहतरमा है, वो लिखती है कि मेरे माता पिता अपनी वसीयत के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं इस वक्त। पता चला है कि वो घर मेरे छोटे भाई को देने का प्लान कर रहे हैं, और मेरी आर्थिक स्थिति इस वक्त ठीक है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि मैंने कड़ी मेहनत की है और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। मेरा जो भाई है वो 32 साल का है और उसने अपनी पूरी अडल्ट लाइफ में बहुत सारी नौकरियां की हैं। जब मैंने अपने माता पिता से कहा कि अनफेयर लगता है, तो मेरी माँ ने कहा तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, उसे सपोर्ट की बहुत जरूरत है और हम उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जिम्मेदार होने की मुझे सजा मिल रही है। तो जो उनका सवाल है कि जब परिवार के फैसले अनफेयर लगे, तब स्वार्थी या अनग्रेटफुल लगे बिना बात कैसे कही जाए, और क्या बड़ी बहन की भूमिका निभाना बंद करके अपने बारे में सोचना गलत है?
4: कई चीजों में एक ही सिचुएशन में कई सारे उसके सोल्यूशन हो सकते हैं
3: जी।
4: इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही चीज राइट है। तो कभी कभी लॉज तो बने होते हैं, और इस समय हमारे जो कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग जो आपकी वसीयत होती है वो दोनों को जाती है
3: जी।
4: भाई को भी जाती है, बहन को भी जाती है।
3: हाँ जी।
4: बट एट द सेम टाइम अगर कोई विलिंगली पेरेंट किसी उस चाइल्ड को सपोर्ट करता है जिसको जरूरत है, और अगर ओल्डर सिबलिंग या यंगर सिबलिंग उससे कम्फर्टेबल है, तो उसमें हर्जा नहीं है। सी इनिशियली क्या होता था, जो वर्षे का अधिकारी होता था वो
3: लड़का होता था।
4: बट द डॉटर वॉज ऑल्सो गिवन गिफ्ट।
3: हाँ।
4: जिसको हमने बाद में डाउरी कहना शुरू कर दिया। दैट वॉज अ वेरी वेरी जेनरस गिफ्ट जो पेरेंट्स देते थे। देन वी सॉ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस जहाँ पर डॉटर या मैरिज होने के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, कोई सिचुएशन आ गई, डिवोर्स हुआ या पति मर गया या कुछ भी, देन लॉज केप्ट चेंजिंग कि वो भी फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर सके। फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। नाउ इन दिस केस इट्स अ फैमिली थिंग। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं दोनों को बराबर मिलना चाहिए, तो भी कोई हर्जा नहीं है। अगर उसमें ऐसा लगता है, सी दिस कम्स आउट ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी, कि अगर किसी दूसरे को उसकी जरूरत है और अगर हम उसको मदद करते हैं, मेरा वो यंगर या ओल्डर सिबलिंग है, तो उसमें भी कुछ हर्जा नहीं है। इट इज टोटली ऑन दैट पर्सन। गलत और सही नहीं है इसमें कुछ भी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पार्शियल नहीं होते, बस उनका नजरिया अलग होता है। उस पर्सपेक्टिव को समझकर रिश्ते को कैसे सेफ रखें, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जो सवाल है वो प्राइमरली इस बात पे नहीं इंकित कर रहा है कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, मैंने पूरी जिंदगी काम किया, और अगर वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हैं?
4: पेरेंट्स होते हैं, एज अ पेरेंट्स, वो हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा दोनों बच्चे सेटल हो जाएं। दो हैं, चार है, छह है। आप पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे, कई बार पता है क्या होता है कि हर घर में हो जाता है, जो होना नहीं चाहिए। पेरेंट्स कभी भी पार्शियल नहीं होना चाहते, पर हमेशा जो थोड़ा सा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, अटेंशन उससे हट करके उस पर चला जाता है जो अपने पैरों पर अभी तक खड़ा नहीं हुआ या थोड़ा सा वीक है। इट कैन हैपन फिजिकल केसेस में भी ना, कई बार आप कई घरों में देखते हैं एक बच्चा फिजिकली वीक होता है,
3: उसको अटेंशन की ज्यादा जरूरत है,
4: उसको अटेंशन की, लव की, कंपैशन की, सपोर्ट की जरूरत है। एज अ पेरेंट वो गलत नहीं है, वो चाहते हैं दोनों सेटल हो जाएं, ये अपने आप अगर सेटल हो गया इसको हम थोड़ी सी मदद कर दें, उनके पर्सपेक्टिव से वो रॉन्ग नहीं है। एज अ सिस्टर अगर आपको भी वो कंपैशन आता है, एम्पैथी आती है कि नहीं, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, भगवान का शुक्रिया है कि उसने मुझे ऐसी बुद्धि दी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी, ऐसा परिवार दिया दैट आई एम सेल्फ सफिशिएंट एंड आई कैन हेल्प अ फैमिली मेंबर, तो उसमें हर्जा तो नहीं है, आप सेवा भाव से भी कर सकते हैं। पर अगर वो चीज उनको नहीं आ रही है, देन आई फील नेगेटिव सोच करके अपने फैमिली मेंबर के प्रति इतना नेगेटिव सोचना या उसको रिजेक्ट करना या उससे हेटेड पैदा हो जाना, इससे तो फिर मन की भावना शुभ रखना ज्यादा जरूरी है। बाहर अगर उनको अपना हिस्सा लेना है तो ले ले। जो रिश्ता होता है वो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। आप यहाँ पर एनर्जी आपकी कम्प्लीटली नेगेटिव है, एनर्जी में बहुत ज्यादा उसके प्रति गुस्सा है, नफरत है, और आपने वो हिस्सा दे भी दिया, वो बहुत अच्छा नहीं है। मन हमारा, मन जो परिवार है उसके लिए मन बहुत शुद्ध होना चाहिए, मन में बहुत प्यार होना चाहिए, मन में बहुत कंपैशन होना चाहिए। बाहर फिर जिसको जो ठीक लगता है कर सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। द फर्स्ट इज कि उनका मन उसके प्रति बहुत बहुत मना स्नेह से भरा होना चाहिए, बाहर उनको जो ठीक लगता है वो कर सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पेरेंट्स के लिए भी जरूरी होता है कि वो अपने बच्चों के बीच प्यार और सपोर्ट का सही बैलेंस बनाए। आइए इसे थोड़ी गहराई से समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ये लेकिन कई परिवारों में होता है, क्योंकि भाई बहनों के बीच में झगड़ा ही आधी बार इस बात का होता है कि पापा मम्मी किससे ज्यादा प्यार करते हैं या उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं। ये तो चलिए प्रॉपर्टी का केस है, बट इसी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पे भाई बहनों के बीच में झगड़ा इस बात से होने लगता है, या भाई भाई के बीच में, बहनों बहनों के बीच में इसलिए होने लगता है कि आपको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और ये सही नहीं है क्योंकि हमने वो सब किया जो हमें करना चाहिए था। तो यहाँ पे इस बारे में बात नहीं हो रही है कि ये सही है गलत, हमको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि हमने वो सारा चीज किया जो हमें करना चाहिए था और तुमने नहीं किया, तो इसमें मेरी क्या गलती?
4: गलती कुछ नहीं है, पेरेंट्स के पे क्या गलती है। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि दोनों बच्चे हैं, दोनों सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, दोनों को एक जैसी पालना देते हैं, एक जैसी एजुकेशन देते हैं, कोशिश तो करते हैं ना। सर्कमस्टेंस भी कई बार ऐसे हो जाते हैं। हर सोल फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली सेम नहीं होती है उसकी स्ट्रेंथ। आज आपके घर में अगर दो बच्चे हैं, वो दो आत्माएं हैं, उनकी फिजिकल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अलग होने वाली है। जब कैपेसिटी अलग है, सो एज अ पेरेंट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हमेशा कमजोर को सहारा दिया जाता है। अगर कोई अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है तो उसमें हर्जा नहीं है, बट देन इफ यू फील दैट यू वर नॉट सपोर्टेड, आप उनसे बात करें। आई मीन आई फील वी हैव टू सी बोथ पर्सपेक्टिव। कई बार अंदर ये दर्द पकड़ के रखना, ब्लेम करना, कंप्लेन करना, ऐसे कई सारे घरों में हो जाता है। बड़ा बच्चा है, आई रिमेम्बर एक घर में बड़ा बच्चा बहुत जल्दी ही ऐसी फील्ड में निकल गया जब मदर को कॉन्स्टेंटली उनके साथ रहना था। स्पोर्ट्स होता है, बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, नेशनल्स, इंटरनेशनल, एक पेरेंट को कॉन्स्टेंटली उसके साथ रहना पड़ा, कंटिन्यूस ट्रैवल करना पड़ा। दूसरा पेरेंट बिजी था अर्न करने में, तो जो यंगर सिबलिंग था वो बहुत निग्लेक्टेड फील किया। एज अ पेरेंट वो कहते हैं कि हमें उस समय रियलाइज नहीं हुआ, हम तो एक बच्चे को सपोर्ट कर रहे थे, उसका करियर बन रहा था, हमें लगा इसका भी उसके प्रति उतना ही प्यार है, पर कब वो निग्लेक्टेड हो गया तो पता नहीं चला। सो आई फील पेरेंट्स आल्सो हैव टू बी अ लिटिल माइंडफुल। आपको उस चीज को फील करना है कि अगर कहीं पर लग रहा है कि वो निग्लेक्ट हो रहा है, जितना आप बैलेंस कर सकते हैं करें। बाकी एज चिल्ड्रेन वी शुड सी देयर इंटेंशन। आप थोड़ा इंटेंट देखने की कोशिश करें, वो जो पेरेंट है उसके इंटेंशन में एक के प्रति ज्यादा प्यार, एक के प्रति कम प्यार, ऐसा नहीं है। लेकिन बस इंटेंट में ये है कि जो सेल्फ सफिशिएंट है वो तो है, जो नहीं है उसको हम जितना सहयोग दे सकें, जितना उसको हम हेल्प कर सकें कि वो भी अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सकें। रिश्तों में भाव भावना देखनी होती है, सिर्फ बाहर आना, बाहर का ही ना देख करके, एक्शन ना देख करके, भाव माना इंटेंट, भावना माना फीलिंग, दैट इज व्हाट रिलेशनशिप्स आर। इंटेंट क्या है, फीलिंग क्या है, सिमिलरली वो सिस्टर की फीलिंग क्या है। फीलिंग अगर प्योर है, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, उस हिस्से की आपको भी जरूरत है, आपको भी चाहिए, ले लीजिए, इट इज ओके।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: अपनी बात रखते वक्त सेल्फिश लगे बिना अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करें, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: तो जब इंटेंट के बारे में और फीलिंग के बारे में वहां तक वो पहुंचे नहीं है, क्योंकि ये बहुत इवॉल्व्ड थॉट है कि भाई आप इस बारे में सोचिए, जब इंसान एक सिचुएशन में फंसा हुआ है तो वो सारी चीजें परे रख देता है, वो कहता नहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ और मुझे ये। उनका सवाल ये है कि स्वार्थी फील हुए बिना या ऐसा दूसरों को ना लगे मैं स्वार्थी हूँ और अनग्रेटफुल भी ना हूँ, किस तरह की बातचीत की जाए, किस तरह से ये अप्रोच किया जाए बात, वरना सामने वाला बोल सकता है यार तुम इतनी स्वार्थी कब हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भाई को तुम सपोर्ट नहीं कर रही।
5: सी, हमें जो करना है वो हमें करना है, अगर हमें ठीक लग रहा है तो हमें करना है। अब आपको जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं करूं भी और सारे भी उस चीज को सपोर्ट करें, ये कैसे हो सकता है?
4: नहीं, तरीका तो होगा ना।
5: तरीका तो डिग्निटी और रिस्पेक्ट से हम बात करेंगे कि नहीं मुझे चाहिए कि आप इक्वालिटी के साथ चलें, उतना ही हम कर सकते हैं।

0: हम कहें कि जो चीज हम करने जा रहे हैं वो सामने वाला भी उसको सपोर्ट करे, ये हमेशा नहीं पॉसिबल होगा।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अपनी बात क्लियरली रखना सेल्फिश होना नहीं बल्कि इमोशनल मैच्योरिटी का साइन होता है। आइए इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सपोर्ट ना करे चलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है जब ऐसी डिमांड रखी जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि आप अपने अपना फायदा देख रहे हैं, आप बहुत सेल्फिश हो गए हैं।
4: तो उनको रखने दीजिए ना, वो उनका पर्सपेक्टिव है। अगर उनको लगता है कि आप स्वार्थी हैं तो वो उनका पर्सपेक्टिव है। दुनिया में लोगों को अपना पर्सपेक्टिव रखने का तो हक है ही ना। आपको अगर लगता है कि आप स्वार्थी नहीं है और ये आपका हक है या ये आपकी जरूरत है, ये आपके लिए इक्वालिटी का बेसिस है, एज लॉन्ग एज यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट, आप उसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा। मुझे आप बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है कि आपने करी हो और सारी की सारी दुनिया उसको अप्रूवल दे?
3: ऐसा नहीं होता।
4: आज आप जो कर रहे हैं, चार लोग ये भी कहेंगे अच्छा कि आप अपने हक के लिए लड़े, इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। चार ऐसे भी होंगे जो कहेंगे इतने स्वार्थी हैं, ये तो पहले ही वेल ऑफ थे, वो नहीं था, दे भी दिया तो क्या हर्जा था, इसमें कौन सी ऐसी बात थी। एंड बोथ आर करेक्ट। जैसे पर्सपेक्टिव है, जैसे ये बॉटल है, आप वहां से देखेंगे तो ये आपको
3: सफेद लग रहा है,
4: सफेद लग रहा है। मैं यहाँ से देखती हूँ तो ग्रीन लग रहा है। अब कौन राइट है?
3: दोनों ही राइट है।
4: सो मेनी केसेस, यही तो लाइफ है ना। लाइफ इज ऑल अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब हम आर्ग्यू तो कर सकते हैं और मैं ये भी चाहूंगी, बस ये मैं चाहना है, मेरी चाहना है कि नहीं, आपको ग्रीन दिखना चाहिए। आपको ग्रीन दिखना चाहिए। आई विल फील कम्फर्टेबल अगर आपको ग्रीन दिखे, पर आपको नहीं दिखेगा। आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। मुझे ग्रीन दिखेगा, आई विल जस्ट हैव टू ट्रस्ट यू कि मे बी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इट इज ट्रांसपेरेंट। सो सिमिलरली इन लाइफ पीपल आर गोइंग टू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। वो बनते हैं उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस, उनके एनवायरमेंट, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके जो कंपनी है उससे उनका पर्सपेक्टिव बनता है। देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। अगर वो अपना हिस्सा लेते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई उनको अनग्रेटफुल कहता है तो वो भी गलत नहीं है। उसको ऐसा लगता है, उसका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि अगर आप वेल ऑफ हैं और आप अगर अपने सिबलिंग को सपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या हर्जा है, हमें तो गिविंग होना चाहिए। हम तो चैरिटी करके उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जिनको हम जानते नहीं है। तो ये तो आपका अपना परिवार है, अगर आपने इनको सपोर्ट किया तो क्या हो गया? तो कौन गलत है इसमें? इससे जो आपको कम्फर्टेबल लगता है आप वो करिए, लेकिन कुछ भी आपको उस चीज पर विश्वास होना चाहिए, आपको उस चीज के ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए। फिर आप कहें कि सब उसको सपोर्ट करें और सब उस चीज को अप्रूव करें, वो नहीं हो सकता है कभी भी। एंड देन इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातों से लग रहा है कि वो करना तो चाह रहे हैं लेकिन उनको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है
3: जी।
4: तो फिर उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एंड हैज टू कम टू टर्म्स विद व्हाट शी इज डिसाइडिंग टू फाइनली डू।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: चैरिटी करने से पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझना क्यों जरूरी होता है, आइए इस बैलेंस को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आप बात कर रही थी कि कभी कभी बहुत सेल्फलेसली भी कोई दे देता है, और ऐसे ही मैं अपने एक कॉलीग से और दोस्त से बात कर रहा था, और वो कह रहे थे कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं, दादा हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन थी और उन्होंने बहुत ही सरल मन से उन्होंने वो जमीन जो है करीब 50-60 एकड़ की थी उन्होंने दान कर दी, क्योंकि वहां पे कोई धर्मशाला बनने वाला था या कोई नेक कार्य के लिए वो काम यूज होने वाला था, तो उन्होंने दे दी। और फिर बिल्कुल बिना किसी चीज के, कोई सामान नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, वो आके अपनी जगह पे सेटल हो गए। तो उन्होंने बहुत नेक काम किया, लेकिन उनका पूरा परिवार जो है वो उन्हें इस बात का दोष देता है कि भाई आपके कारण हम तकलीफ में जी रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करें?
4: सी, एज अ पेरेंट्स, अगर आपकी फैमिली है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। उनको बिल्कुल बेसहारा छोड़ करके भी अगर हम चैरिटी करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन उनको सपोर्ट करने के बाद, उनको सेट करने के बाद, अगर हम कुछ चैरिटी करना चाहते हैं तो उसमें हर्जा नहीं
3: तो है, ठीक है।
4: इनफैक्ट बच्चों को भी छुट्टी देनी चाहिए। अगर आपने पढ़ा दिया, बच्चे वेल ऑफ है, दिस इज समथिंग आई पर्सनली बिलीव, उन्होंने आपको पढ़ा दिया, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, यू अर्निंग वेरी वेल, देन एक्चुअली में एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे को अपने पेरेंट्स को कहना चाहिए ये आपका है,
3: आपको जो मर्जी,
4: आपको जो करना है आप कर सकते हैं।
3: हाँ।
4: कई बार हमारी भी ग्रीड इतनी होती है
3: कि ये भी हमें चाहिए,
4: सब कुछ ही हमें चाहिए
3: जी।
4: है तो कुछ नहीं, ग्रीड ही है। अब क्यों दान का कल्चर तो भारत में शुरू से ही चला आता है, क्योंकि जो भी आपने कमाया है वो यहीं रह जाता है, भले आपने अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जो चीज आप दान करते हैं वो पुण्य बन जाता है। चाहे आप धन दान करते हैं, समय, टैलेंट, स्किल, शक्ति, अनुभव, जब आप दान करते हैं, आप डोनेट करते हैं, वो पुण्य कर्म बन जाता है,
3: और वो हिसाब आपके साथ जाता है।
4: आपके साथ तो सिर्फ कर्म ही जाना है, आपके साथ तो कर्मों का ही हिसाब किताब जाएगा ना। अगर कोई धर्मशाला बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई कॉलेज बनाता है, तो फिर कहा जाता है कि अगर इसने कॉलेज बनाया तो अगले जन्म में अच्छी पढ़ाई मिलेगी, होता है ऐसा, कुछ तो मिलेगा ना। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आप कुछ कर रहे हैं तो उसका रिटर्न इस बर्थ में नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में तो आना ही है। इसीलिए जन्म होते ही किसी का अलग अलग है ना सब। अगर आप जन्म देके किसी का महल में है, किसी को इतनी अच्छी एजुकेशन है, किसी को इतना अच्छी हेल्थ है, सेम तो नहीं है सबका, तो कर्मों का फल तो मिलता ही है। तो जो आपने दान किया वो श्रेष्ठ कर्म है, इट कुड बी इन एनी फॉर्म। आप स्किल भी कर रहे हैं, आप वाणी से कर रहे हैं, जैसे दान भी क्या होता है, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन
3: जी।
4: ये अलग अलग तरीके हैं। आप तन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं। मन से दान करना क्या होता है, आप अगर हरेक के लिए अच्छा सोचते हैं, हरेक के लिए शुभ भावना रखते हैं,
3: वो भी एक तरह का दान है।
4: 100%।
3: अरे वाह,
4: ये दान ही तो है, और ये बहुत मुश्किल दान है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, महेश बजाज जी लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है और अगर होता है तो क्यों होता है?
3: लव एट फर्स्ट साइट, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कई बार हम कहते हैं ना, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया।
2: हाँ।
3: होता क्या है कि जब आप किसी को मिलते हैं और आपको लगता है यही है।
2: हाँ।
3: आप उनको पहली बार नहीं मिल रहे होते हैं।
2: अच्छा, इसमें भी कोई पुराना कनेक्शन है?
3: 100% कनेक्शन है, तभी वो एनर्जी एकदम एक्सचेंज होती है और आपको लगता है यही है। ये कई चीजों में होता है।
2: हाँ।
3: मना जरूर कोई भी व्यक्ति, कई बार हम किसी जगह पर जाते हैं, हमें लगता है हम यहाँ पहले आए हुए,
2: पहले आ चुके हैं, देजा वु कहते हैं।
3: हम किसी से मिलते हैं, हमें लगता है हम इनसे पहले मिले हुए हैं।
2: हाँ।
3: हम मिले हुए होते हैं।
2: हाँ।
3: हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, और कार्मिक अकाउंट का मतलब बुरा ही नहीं होता।
2: हाँ।
3: कार्मिक अकाउंट, किसी से हमें बहुत सुख मिलना होता है,
2: हो सकता है
3: किसी से हो सकता है कि हमारा कुछ दुख भी मिलना हो, पर वो एकदम लगता है यही है। अब कॉस्ट्यूम बदल गया पर सोल वही है, तो वो सोल के नजदीक आते ही एनर्जी एक्सचेंज होने लग जाती है, और इसीलिए हम उसकी तरफ ग्रेविटेट होने लगते हैं, और फिर हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट है, जो भी रिश्ता है, वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 5G Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, ये अनोनमस है। पूछते हैं कि जब भगवान पर भरोसा ही हिलने लगे और कोई रास्ता ना दिखे तब क्या करें?
3: भरोसा हमारा तब हिलता है जब कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कोई इच्छा होती है। हम बहुत उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमें लगता है हो जाना चाहिए। कभी कभी जब हमारे अनुसार नहीं होता लाइफ में, तब भरोसा हिलता है, हमें लगता है शायद भगवान ने हमारे साथ कुछ गलत किया। एक्चुअली में ये रियलाइजेशन होना कि हमारे साथ जो कुछ होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। भगवान दो चीजें, पहला सही गलत कर्म की पहचान देता है। उसका जो काम है, जब हम परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है
2: जी।
3: और दूसरा परमात्मा, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम पावर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्व शक्तियों का भंडार है, उससे हमें शक्ति मिलती है कि अगर हमारे से कोई गलत कर्म हो भी गया है, आज या गलत आज उसका कॉन्सिक्वेंस लौट कर आए, तो हम उसको फेस कर सके, हम उसमें हिले नहीं, हम स्टेबिलिटी से उसको स्वीकार कर सके और उसको फेस कर सके। पर हम परमात्मा से शक्ति नहीं मांगते, उससे जुड़ करके शक्ति नहीं लेते कि हम इस चीज का सामना कर सके। हम तो उससे नाराज हो जाते हैं कि ये मेरे सामने आया ही क्यों, ये बात ही क्यों आई, आपने ये बात क्यों भेजी। तो कई बार क्लैरिटी ना होने के कारण हमारा भरोसा हिल जाता है। बाकी वैसे जो परमात्मा को समझता है, किसी ने भी अगर उसका अनुभव किया है, तो वो आपको यही बताएगा कि कितना वो रहम का सागर है, कितना प्यार का सागर है, कितना ज्ञान का सागर है। और वो तो चाहता ही है कि हर एक को इतनी शक्ति मिले कि उसके जीवन में मेहनत नहीं हो, संघर्ष नहीं हो, बहुत आराम से बेफिक्र बादशाह होकर के वो अपना जीवन क्रॉस कर सके।
2: स्टीवन फर्टिक नाम के एक अमेरिकन पास्टर हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, और एलिवेशन चर्च नाम का जो चर्च है उनके फाउंडर हुए हैं। उन्होंने बहुत कमाल की एक बात कही जो मुझे इस संदर्भ में बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा करके प्रतीक्षा करने से भी कठिन काम ये है कि यही इच्छा करना कि काश हमने ऐसा किया होता। कि ज्यादातर हम प्रतीक्षा ही नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं अपनी कामना करके, बस हमको लगता है अभी हो जाना चाहिए। बहुत कमाल की छोटी सी बात है, लेकिन कमाल की बात वो कहते हैं। और आप वैसे भी कह रही हैं कि वो हमें सिर्फ मार्गदर्शन देता है, बाकी हमें ही करना है।
3: हाँ, मैंने परमात्मा सबके लिए अगर कर दे तो परफेक्ट करेगा ना।
2: सही बात है।
3: जैसे एज अ पेरेंट, आप पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं, फिर उसके कर्म से उसकी डेस्टिनी बनती है। गाइड करने के बाद भी बच्चा कई बार आपका कहना नहीं मानता, आप देख भी रहे होते हैं कि ये अपनी तकदीर को लकीर लगा रहा है, पर तो भी आप क्या कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा भी पढ़ा सकता है, समझा सकता है, गाइड कर सकता है, पावर दे सकता है, करना तो आपको ही है ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया।

0: Radio Mitri, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Mitri Mornings. Mitri Mornings with Priscilla. Only on Radio Mitri, New York. It's hot.
2: Mitri Mornings.
1: Mitri Mornings with Priscilla. It's hot.
3: पता है कुछ कुछ मॉर्निंग्स में कॉफी की ज्यादा जरूरत पड़ती है और कुछ मॉर्निंग्स में यू नीड अ थेरेपिस्ट एंड देन कुछ मॉर्निंग्स ऐसी होती है जहां पर टेक्निकली तुम्हें एक शो की जरूरत होती है. गुड मॉर्निंग गाइस, ये वही शो है जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स ऑफिशियली ऑन. मेरा नाम है प्रिसिला एंड लिसन, वेदर यू जस्ट वोक अप या फिर फैबुलस एंड फुली फंक्शनिंग हो ऑलरेडी या फिर यू आर करंटली स्टेयरिंग एट योर कॉफी लाइक प्लीज डू द जॉब टुडे फॉर मी, आई हैव गॉट यू एंड आई हैव गॉट यू फॉर अ फ्यू मोर आवर्स. Because this is your little slice of home right here in the middle of your American morning. थोड़ा थोड़ा सा बॉलीवुड की बातें करने वाले, थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें करने वाले हैं, थोड़ा सारे यार सेम टू सेम ब्रो ये सब करने वाले हैं एंड ऑब्वियसली इनफ मिर्चीदार म्यूजिक टू मेक दैट कम्यूट फील लेस कम्यूट एंड मोर लाइक अ मिनी डांस फ्लोर. सो बकल अप क्वाइट लिटरली माई देसी फैम एंड आज का मॉर्निंग जो है वो शुरू हो चुका है. आई हैव गॉट म्यूजिक, मस्ती, मिर्ची एंड मी बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हो, ढेर सारी बातें करने वाले हैं, ढेर सारी अपडेट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बहुत कुछ सुनने वाली हूँ. एंड हे डोंट जस्ट लिसन टू मी, टॉक बैक. व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244 एंड टेल मी व्हाट्स हैपनिंग इन योर मॉर्निंग एंड फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेज, दैट इज MIRCHIPRIS. और अब चला देंगे मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब पता करते हैं आज का दिन कैसा जाने वाला है। वेदरवाइज राइट नाउ इट्स अराउंड 57 डिग्रीज फारेनहाइट एंड बिकॉज ऑफ द वेस्ट साउथ वेस्ट ब्रीज इट्स फीलिंग क्लोजर टू 56 डिग्रीज फारेनहाइट। सो हाँ, मॉर्निंग कम्यूट के लिए हल्का सा जैकेट वाला मोमेंट हो सकता है। एंड एज वी मूव इन टू द डे एक्सपेक्ट पार्टली क्लाउडी स्काईज अराउंड 9 AM एंड बाय लेट मॉर्निंग क्लाउड्स विल बी टेकिंग ओवर एंड मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस हो जाएंगी। बट गुड न्यूज ये है कि रेन का ड्रामा ऑलमोस्ट जीरो है। देयर इज ओनली अबाउट 10% चांस ऑफ रेन एंड प्रेसिपिटेशन ओवर द लास्ट 24 आवर्स 0 millimeters और नेक्स्ट 24 आवर्स आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी जीरो। मतलब कि आज अम्ब्रेला को छुट्टी मिल सकती है। टेम्परेचर्स क्लाइंब टू अराउंड 75 डिग्रीज फारेनहाइट विद अ लो टुनाइट नियर 57 डिग्रीज फारेनहाइट और ह्यूमिडिटी जो है इट विल बी अराउंड 74% ड्यूरिंग द डे एंड कुड राइज अप टू 90% ओवरनाइट। सो हेयर फ्रिज जो है उसका ऑफिशियल वार्निंग मैंने दे दिया है तुम्हें। विंड स्टे फेयरली light at around 5 miles per hour today and tonight we are looking at mostly cloudy to overcast skies. So aaj ke din weather ka mood jo hai na wo hai comfortable, cloudy and comparatively calm. Perfect weather for that hot chai and a little bit Bollywood ke mirchidar bangers. Bahar nikloge to SPF 50 plus laga kar jana. Keep yourself hydrated and mirchi ki vibes barkarar rakho. Main hoon Prisila, tumhare saath mein, connect karo mujhse. Mirchi Pris is my handle on Instagram and X and WhatsApp 9033mirchi is my number. That's 9033-647-244. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और आप सुनने वाले हो मिर्ची आवर का थ्री। सबसे पहले, अ फ्लाई दुबई फ्लाई ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई टू टेल अवीव मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग इन सऊदी अरेबिया आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ अ वायलेंट ऑल्टरकेशन बिटवीन द पायलट्स। द प्लेन रिपोर्टेडली ड्रॉप्ड अराउंड 17,400 फीट इन जस्ट 2 मिनट्स बिफोर द सिचुएशन वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट हैपेंड। रिपोर्ट्स से एवरीवन ऑन बोर्ड इज सेफ। नंबर टू पर, इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम हॉलीवुड। एक्टर चैड लो एंड किम पेंटर हैव अनाउंस्ड द डेथ ऑफ देयर 13-year-old daughter Fiona. The family has asked for privacy and also urged anyone struggling with mental health to reach out for support. If you or someone you know is in crisis in the US, you can call or text 988 for the suicide and crisis lifeline. And lastly, a new street cleaning machine was introduced to collect roadside litter in Gurgaon in India, but a viral video showed a worker manually operating its suction pipe to pick up individual pieces of garbage. And naturally, the internet questioned, where is the automation actually? The civic body says the machines are part of its mechanized street cleaning efforts. And that's your Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. WhatsApp par mera number hai 90 3364-7244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात करा दिए।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा।
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
1: हाँ हाँ।
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, कभी लेकिन ना मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सविता।
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही
1: हूँ।
3: देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा।
1: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और देसी स्पोर्ट्स फैंस, फोन को साइड में रखो क्योंकि हम बात करने वाले हैं मेडल्स की।
2: मिर्ची वॉच इट।
1: एशियन गेम्स में इंडिया इज मेकिंग सम सीरियस नॉइज इन आईची नागोया। डे 10 के बाद इंडिया के अकाउंट में 52 मेडल्स आ चुके हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 21 सिल्वर हैं एंड 25 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। एंड दैट टेक्स अस टू द 10th प्लेस ऑन द मेडल टेबल। अभी फिलहाल गेम्स ऑनगोइंग है और इंडिया ऑलरेडी हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, मतलब कि मेडल कवर्ड, अभी और स्पेस बनाना बाकी है। और कुछ हिस्टोरिक मोमेंट्स भी बने हैं। नीरू डांडा, जैसे कि मैंने कल बताया था, बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एशियन गेम्स गोल्ड इन इंडिविजुअल वुमेन्स ट्रैप विद एन एशियन रिकॉर्ड स्कोर ऑफ 28। मिक्स्ड 4x100 रिले टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता है 41.06 सेकंड्स में, अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। क्रिकेट में बारिश ने क्वार्टर फाइनल्स को लिटरली वॉश आउट कर दिया, पर इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सेमीज में पहुंच चुके हैं। इंडिया फेसेस श्रीलंका टुमारो। एंड रेसलिंग में सुनील कुमार ने 87 किलोज में ब्रॉन्ज जीत कर कंजेकटिव एशियन गेम्स मेडल नंबर 2 कर दिया है। एंड यस, मेडल्स आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, एंड हम डायस्पोरा वाले जो है ना, सुबह सुबह स्टेटिस्टिक्स के साथ इमोशनली अटैच हो रहे हैं। और अगर तुम मुझसे इमोशनली अटैच नहीं हुए हो अभी तक, तो क्या कर रहे हो यार। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, और जाकर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो तुम 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Yeah.
1: न चुस्कियों में न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड बर्थडे पार्टी स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, क्योंकि आज सितंबर 30th को जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे है उनको बताना है मुझे कि आज तुम्हारे साथ कौन कौन अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले वी गॉट द गोल्डन वॉइस फ्रॉम इंडिया शान एंड बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार प्रोशनजीत चैटर्जी, एंड ज्वाइनिंग देम एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर, एक्ट्रेस श्वेता भारद्वाज एंड पैरालंपिक चैंपियन दीपा मलिक। मतलब की बर्थडे केक का साइज जो है वो छोटा हुआ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज आज के गेस्ट लिस्ट काफी ह्यूज है। एंड इंटरनेशनली वी गॉट मोनिका ब्लूची, एक्ट्रेस मैरियो कोतियार एंड फ्रैन ड्रेशर फ्रॉम द नैनी, किरण कल्किन फ्रॉम सक्सेशन, सिंगर टी पेन एंड डांसर एक्ट्रेस मैडी जीगलर एंड एज्रा मिलर, ये सारे के सारे हैं सितंबर 30th के बेबीज। सो बर्थडे बेबीज, आज यू आर नॉट अलाउड टू से मेरा बर्थडे तो बस नॉर्मल सा डे है, बिकॉज यू गॉट सम प्रीटी अमेजिंग नेम्स विद यू। सो विश यू हैप्पीएस्ट बर्थडे, खाओ पियो ऐश करो, केक बांटो, केक खिलाओ, और मुझे अपने बर्थडे पिक्चर्स भेज सकते हो तुम। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। ऑल्सो सेंड मी योर शाउट आउट हियर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स पर गोल्ड रेट अपडेट.
2: Rajwells.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,215. $4,215 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और आने वाली पुष्य नक्षत्र धनतेरस दिवाली के समय गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएं, उससे पहले आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें Rajwells.com के साथ. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ राज ज्वेल्स की यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें आज ज्वेलरी अप्रूव होने पे गोल्ड का प्राइस लॉक करके घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दें बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी हिडन फी के. ज्वेलरी आपके साथ, गोल्ड का प्राइस लॉक्ड, 9 इंस्टॉलमेंट्स में सेम प्राइस पे ज्वेलरी आपके साथ घर जाएगी और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स की टीम को पैसे मिलेंगे बिना किसी हिडन फी और इंटरेस्ट के. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें Rajwells.com के साथ. थैंक यू.
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड रेट अपडेट. सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ. मेरे साथ रहो इंस्टा और एक्स पर भी. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. Welcome to the last hour of Mirchi Mornings. My name is Priscilla. सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डायरेक्टिंग द यूएस गवर्नमेंट टू यूज सुपर इंटेलिजेंस इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज SI इंस्टेड ऑफ AI. दिस विल बी डन इन ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशंस वेयर लीगली परमिटेड. और इलॉन मस्क ने इवेंट में गलती से फिर AI बोल दिया बिफोर करेक्टिंग हिमसेल्फ टू SI. ट्रंप लाफ्ड एट द स्लिप अप. नंबर टू पर रिपोर्ट से रशिया इज यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग टिकटॉक एंड टेलीग्राम टू रिक्रूट सम अमेरिकन्स फॉर मिलिट्री सर्विसेज linked to the war in Ukraine. Ukrainian officials have said at least 18 Americans have joined, with reports of signing bonuses around $26,000. These are reported claims, and recruitment and participation details remain a matter of ongoing reporting. And lastly, a viral video from Muzaffarpur, India shows moviegoers removing their footwear before entering a theater to watch The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia. The film's Chhath Puja sequence have been getting attention, and viewers apparently took the festive spirit right to the theater entrance. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. WhatsApp par mera number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: बस तुम रहते हो।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर कुमार।
3: या
4: हेलो सर, हाउ आर यू?
3: फाइन फाइन फाइन।
4: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
3: नहीं, आप बता
4: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
3: रिगार्डिंग व्हाट?
4: बस आपका ना आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
3: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
4: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
3: हाँ हाँ
4: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने? एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
3: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
4: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
3: हाँ मिलते हैं।
4: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
3: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ, ट्यूसडे आप एक काम करो मिल लो मुझे।
4: मैं ट्यूसडे किसी कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
3: 7 बजे
4: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
3: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
4: सर संडे कितने बजे?
3: संडे आ जाओ आप, दिन में 3 बजे
4: सर। संडे 3 बजे दिन में सर? मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
3: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताइए।
4: पहले अपने ही निकाल।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स। अब बारी आ चुकी है पता करने की कि आज का दिन कैसा जाने वाला है।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, प्रॉमिस का लोड थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। जो बोल दिया सो बोल दिया, उसको डिलीवर भी करना होता है यार। वर्क में एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा लेकिन इट्स गोना बी वर्थ इट। लकी कलर इज फायर इंजन रेड, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज प्रैक्टिकल चॉइसेस का दिन है। कम्फर्ट जोन में घुसने से पहले अनफिनिश्ड बिजनेस को निपटाओ। पीस ऑफ माइंड तभी मिलेगा जब पेंडिंग काम जो है वो पेंडिंग नहीं रहेंगे। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, एनर्जी बहुत है, बस एक्शन भी होनी चाहिए। गोल्स पे फोकस करो, जल्दी जल्दी में डिसीजंस मत लो। प्रोफेशनल काम में कंसंट्रेशन इज योर सुपर पावर टुडे। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, कॉन्फिडेंस हाई है, एंथुजियाज्म हायर है। शॉर्ट ट्रिप या टीम के साथ कोलैबोरेशन से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बेसिकली सोलो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, टीम को भी स्क्रीन प्ले में पूरी तरह शामिल करो। लकी कलर इज कोरल पिंक, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, करेज और डायनामिज्म फुल पावर पे है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ा सा अलर्ट रहना। और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस वो आज बिना इनविटेशन के आ सकते हैं, सो बी अवेयर। लकी कलर इज सनफ्लावर येलो, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस भी राइजिंग है और सोशल स्टैंडिंग को बूस्ट मिल सकता है, लेकिन सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को नॉट टुडे सैटर्न बोलकर हटा देना साइड में। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 5। And that's your Rashi Zone Part 1. अब बची बाकी की 6 राशियां, वो लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में। तब तक तुम सुनो मिर्ची दार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो 9033647244 पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम फॉर राशि जोन पार्ट टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट करना है। फाइनेंशियल डिसीजंस में इम्पल्सिव मत होना और अपने आइडियाज प्रेजेंट करते वक्त कॉन्फिडेंस जो है फुल वॉल्यूम पर रखो। लकी कलर फॉर यू इज मिडनाइट ब्लू, लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इमोशनल स्टेबिलिटी, बेटर अर्निंग्स इम्प्रूव हो सकती है और करियर में प्रोग्रेस के साइंस है। प्रोजेक्ट्स को कामली रिव्यू करो, पेशेंस रखो, पैनिक नहीं। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ऑर्गेनाइजेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड टुडे। प्रोफेशनल नेटवर्किंग पे ज्यादा फोकस करो बिकॉज हार्ड वर्क से रिवॉर्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बेसिकली लिंक्डइन वाला वर्जन ऑफ यू नीड्स टू वेक अप एंड गेट टू वर्क। लकी कलर इज टील, लकी नंबर इज 4। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, फाइनेंशियल गेन्स और प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस दोनों साइड से गुड वाइब्स आ रही है। जो टास्क पोस्टपोन किए थे उनको कॉन्फिडेंस के साथ रिस्टार्ट करो, कल करेंगे डिपार्टमेंट आज बंद है। लकी कलर इज कॉपर, लकी नंबर इज 11। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, पेशेंस, प्लानिंग और हेल्थ, तीन वर्ड्स याद रखो। आज न्यू बिजनेस इन्वेस्टमेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखो, हर शाइनी अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं होता है। लकी कलर इज आक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 13। पाइसीज यानी मेन राशि, करियर डायरेक्शन में शिफ्ट आ सकता है और करेज लॉक होगा। इम्पोर्टेंट पेंडिंग ड्राफ्ट्स भेजने हैं, डिसीजंस लेने हैं, आज सेंड का बटन दबाओ और उससे दोस्ती कर लो। लकी कलर इज प्लम पर्पल, लकी नंबर इज 10। एंड देयर यू हैव इट, राशि जोन हुआ खत्म, लेकिन मिर्ची मॉर्निंग्स अभी जारी है और अब मिर्चीदार गानों की बारी है। वाह क्या राइम किया मैंने। मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: Radio Mitchie, New York. It's hot.
1: This is something

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड बस अब एक लास्ट अपडेट बची है बिफोर आई लेट यू गो। और विराट कोहली के फैंस अपने कान खोलकर वॉल्यूम बढ़ाकर सुनना, क्योंकि किंग ने रैंकिंग्स में फिर से एंट्री मार दी है। एंड विद दैट मिर्ची मॉर्निंग्स अब ऑफिशियली रैप अप हो रहा है। लेकिन जाने से पहले पूरी खबर तो बताकर जाऊं। विराट कोहली इज नाउ द वर्ल्ड्स नंबर 2 ओडीआई बैटर आफ्टर स्मैशिंग हिज 55th ओडीआई 100 अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। विराट हैज जंप्ड

मतलब कि कंपटीशन जो है घर का ही है, एक तरफ किंग है दूसरी तरफ हमारा गिल है, एंड ऑनेस्टली 55 ओडीआई 100s, भाई तुम लोग बर्थडे पे 55 कैंडल देखकर टायर्ड हो जाते हो, लेकिन विराट जो है वो 55वां 100 मारकर रैंकिंग्स में जंप कर रहे हैं। सो दैट्स योर लिटिल स्पोर्ट्स अपडेट बिफोर वी साइन ऑफ। ऑल द विराट फैंस कांग्रेचुलेशंस, एंड ऑल दोस हु डोंट लाइक विराट, व्हाई डोंट यू लाइक विराट, थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी बोले तो प्रिसिला दिस मॉर्निंग, फॉर लव्स, फॉर म्यूजिक, फॉर मिट्री एंड फॉर मस्ती। सुनते रहो, सेम टाइम ट्यून इन करो, रोज मिलती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा एंड एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट, रोज मिलती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टीडीएलजे ले लो, मोहब्बतें ले लो, रब ने बना दी जोड़ी ले लो, ये तीनों और भी कई सारी हिट हिट फिल्में, धूम ले लो, वॉर टू ले लो, ऑल ऑफ देम, ये सब बनाने वाले थे आदि चोपड़ा यानी आदित्य चोपड़ा। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने ये फिल्म मेकिंग जो थी ये सीखी कौन सी फिल्म से, कौन सी फिल्म के साथ उन्होंने सेट पे पहली बार कदम रखा था, आज उसी फिल्म को लेकर के आई हूँ। यश चोपड़ा साहब बना रहे थे चांदनी, ओ मेरी चांदनी। वेल, इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने अपने बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर यानी आदि चोपड़ा को असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था, और बस इसी फिल्म की बारीकियों को सीख करके आदित्य चोपड़ा ने आगे आने वाली सारी फिल्में बनाई। चांदनी के नाम बहुत सारे किस्से हैं, सब पता करके लाई हूँ, एक एक करके शेयर करूंगी। अभी जल्दी किस बात के, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे सुनो होता है क्या। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ। सर, ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा, जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना, वो रीप्ले भी करेगा। तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
3: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
5: अरे बोल कौन रहा है?
4: सर ये वाला भेज दें बीप।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
5: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
5: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
3: अरे बावले हो गए हो क्या?
5: अरे बावले हो गए हो क्या?
4: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
3: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
5: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
3: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
5: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
3: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
5: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: सर ये वाला ठीक है बीप।
3: अबे पागल, ले ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
5: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
5: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
3: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है।
5: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
4: सेंट। सर ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
3: अरे भाई किसको भेज दिया?
4: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
3: अबे ओ पागल मार, ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ए पागल।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यश चोपड़ा साहब ने तो अपनी चांदनी रेखा जी में देखी थी पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एंड आज जिस फिल्म की बातें हो रही हैं वो है रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। सो यश चोपड़ा साहब ने जब ये फिल्म बनाई ना वो चाहते थे कि चांदनी के रोल में उमराव जान, मेरा मतलब है कि रेखा जी आए। एंड ऑल्सो बिकॉज चांदनी नाम काफ़ी फेमस हो चुका था लोगों के बीच में। पूछो क्यों? क्योंकि इस फिल्म से पहले यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी सिलसिला और सिलसिला में चांदनी बनी थी रेखा जी, यानी कि उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम चांदनी था। लेकिन रेखा जी ने ना अनएक्सपेक्टेडली, यश साहब को कोई मना नहीं करता था, उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। क्यों किया? इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी बताऊंगी आपको। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

क्योंकि रेखा नहीं चाहती थी कि चांदनी की कोई भी याद उनके पास अब रह जाए। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीदेवी वाली चांदनी। अब हुआ ये कि यश चोपड़ा साहब चाहते थे कि रेखा जी उनकी फिल्म की चांदनी बने, और ऐसा इसलिए भी बिकॉज सिलसिला जब उन्होंने बनाई थी ना, जो कि चांदनी से पहले थी, उसमें रेखा जी ने चांदनी का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड जब यश साहब उनके पास ये रोल का ऑफर लेकर के गए, He never expected कि रेखा जी इस इतने मीठी रोल से, इतने खूबसूरत रोल से मना कर देंगे, क्योंकि इस रोल में बहुत सारे शेड्स थे। रेखा जी ने पता है क्यों मना किया? She said कि मुझे ना, जब मैंने सिलसिला करी तो बहुत ही मेरी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि टॉर्चर हुआ, और वो काफ़ी ड्रेनिंग था मुझे सिलसिला को फिर से रिपीट नहीं करना। एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड कि सिलसिला से रिलेटेड अगर एक कैरेक्टर का नाम भी चांदनी रिपीट हो रहा है तो वो उस यादों में नहीं जाना चाहती थी। ऑलराइट, फिर श्रीदेवी कैसे आई बताऊंगी आपको। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

माधुरी दीक्षित सारी उस टाइम की बड़ी एक्ट्रेसेस ने ये रोल करने से मना कर दिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, चांदनी फिल्म की बात हो रही। कौन सा रोल मना कर दिया? देविका का रोल। देविका विनोद खन्ना की वाइफ दिखाई जाती है, जो कुछ देर के लिए आती है, एक आध गाने में आती है, एंड दैट्स इट। वेल ऑफकोर्स उस टाइम की सारी एक्ट्रेसेस को लगा कि इतना बड़ा रोल, इतना मीटी रोल जो है चांदनी का, वो तो श्रीदेवी को जा रहा है। अब श्रीदेवी के सामने हमें से कौन टिकेगा, इसलिए मोस्ट ऑफ देम डिनाइड डूइंग द रोल। फिर आई जूही चावला। जूही चावला एकदम फ्रेश फेस थी उस समय, एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू यू नो बिग फिल्म, शी वॉज ट्राइंग टू वर्क विद बिग डायरेक्टर्स। तो जैसे ही यश साहब ने ये न्यू कमर जूही चावला को रिक्वेस्ट किया, वो फौरन मान गई, एंड दिस वर्कड आउट इन हर फेवर। क्योंकि इसके बाद एक अच्छा सा मेकओवर दे करके यश साहब ने लॉन्च की अपनी जूही चावला को इन द फिल्म डॉर। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना, वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंट्स पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है, एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो, एंड सो मैनी ऑफ देम। भाई, शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो, वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की। वेल, आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी, हाउ अबाउट ज़ीनत अमान। तो वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो डॉक्टर सविता से बात करा दिए।
3: तो सविता बोल रही हूँ।
4: डॉक्टर ये तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
3: क्या परेशानी है?
4: ना एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता
3: है। तो वो तो भरता ही है।
4: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
3: अच्छा,
4: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
3: हाँ हाँ।
4: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
3: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
4: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
3: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
4: नहीं,
3: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
4: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
3: अच्छा।
4: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
3: अच्छा, कभी लेकिन नहाने को। मैं समझ रही हूँ।
4: हाँ, क्या समझ रही
3: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
4: डॉक्टर सविता।
3: हाँ जी,
5: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही
3: हूँ।
5: देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। थोड़ा सा
3: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
5: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
3: कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीज़न पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पर नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पर बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफकोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

only on Radio Mercy New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

चांदनी जैसी रोमांटिक फिल्म ना उस दौर में आई थी जब उस समय सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और एक्शन फिल्में ही लोग देखने जाते थे बॉक्स ऑफिस पे। नाउ चांदनी कहते हैं कि वो उस रोमांटिक जॉनरा को ना फिर से वापस लेकर के आया। लेकिन आपको पता है यश चोपड़ा साहब को ये आइडिया आया कहाँ से? मैं बताती हूँ। कहते हैं कि यश चोपड़ा साहब पुणे से लेकर के बॉम्बे तक एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे किसी काम से, एंड ही सडनली नोटिस कि जितने भी बैनर्स, जितने भी पोस्टर्स लगे हैं बड़े बड़े फिल्मों के, वो सब एक्शन फिल्में हैं। एंड ही रियलाइज कि वेयर इज द रोमांस। दैट वाज द टाइम जब उनको लगा कि ओहो, ये वो टाइम है जब मुझे वापस इंडिया को, बॉलीवुड को ना रोमांस देना चाहिए। और उन्होंने चांदनी बना दी, एंड व्हाट अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेल, आज इसी फिल्म की बातें, इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ, तो बस मिर्ची सुन रहे हो और सुनते रहो।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: dai.
1: विनोद खन्ना की इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे यश चोपड़ा। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म चांदनी। अब क्या हुआ कि विनोद खन्ना हमेशा सेट पे बहुत लेट आते थे। यश चोपड़ा यूज्ड टू बी ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम एंड रेस्ट ऑफ द क्रू एज वेल। श्रीदेवी तो उस समय नई नई स्टार थी। सो विनोद खन्ना के लेट आने के चक्कर में यश चोपड़ा साहब को इतना खराब लगा, इतना गुस्सा आया दैट इट इवेंचुअली लेड टू चेंजिंग द स्क्रिप्ट। अगर आप चांदनी देखो तो होता क्या है कि पहले स्क्रिप्ट में सोचा गया था स्टोरी लाइन में कि फर्स्ट हाफ विल बी डेडिकेटेड टू ऋषि कपूर एंड आफ्टर ही मीट्स द एक्सीडेंट उसके बाद इंटरमिशन के बाद विनोद खन्ना पे फिल्म जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि विनोद खन्ना के सीन्स लेने में ही ना आधे से ज्यादा दिन निकल जाता था और आधा दिन उनका वेट करने में। तो यश चोपड़ा साहब ने ना एकदम स्क्रिप्ट ही बदल दी। उन्होंने विनोद खन्ना को एक्चुअली में बस एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह थोड़े बहुत सीन्स दिए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ चांदनी के गाने आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आपको श्रेया के साथ, और आज चांदनी फिल्म की बातें हो रही हैं, इस फिल्म के गाने हो रहे हैं, और जो अगला गाना है वो मुझे लगता है कि हर ब्राइड अपने संगीत में कभी ना कभी जरूर गाती और इस पे परफॉर्म करती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, इसमें पहला संदेशा पता नहीं किसका आया, दूसरा संदेशा, तीसरा संदेशा, इट इज सच अ वेडिंग सॉन्ग। एंड यू नो ये गाना किसने गाया है? You will be shocked to know, you will be surprised to know. Well, ये गाना पैमेला चोपड़ा जी ने गाया है, यानी यश चोपड़ा की वाइफ। तो ये गाना आज हो जाए।

0: हेलो
1: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा, जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना, वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
0: बीप। अरे बोल कौन रहा है
1: सर, ये वाला भेज दें बीप।
0: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
1: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
1: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या।
1: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
2: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
1: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
2: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
1: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
1: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
1: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले।
1: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
1: सेंट। अबे सर ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
1: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल मॉडल, ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ए पागल।
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

व्हाइट चूड़ीदार, व्हाइट कुर्ता एंड लहरिए वाला दुपट्टा, पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। और कहते हैं चांदनी चौक के जितने भी स्टोर्स थे, जितनी भी शॉप्स थी, उन पे ना ये कॉस्ट्यूम कम पड़ गई थी, हजारों लड़कियां बस यही खरीद के जा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी। सो भाई, इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर पहले थी भानु अथैया जी, यस द रिनाउन भानु अथैया जी। व्हाट हैपेंड वाज कि उनके कुछ क्लैश हुआ यश चोपड़ा जी के साथ एंड शी लेफ्ट द फिल्म। उसके बाद इन केम लीना दारू, एंड लीना दारू ने भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को यू नो ड्रेस किया था, बट फॉर हर चांदनी जैसा यश जी ने डिस्क्राइब किया था ना, उनके लिए उन्होंने बस एक व्हाइट कुर्ता, व्हाइट चूड़ीदार एंड लहरिए वाला दुपट्टा चूज किया एंड इट बिकेम आइकॉनिक। मेरी मॉम भी बताती हैं कि मतलब हर कोई वही कॉस्ट्यूम, हर लड़की वही कॉस्ट्यूम पहनना चाहती थी और पहनी भी। आप सोचो, हजारों स्टॉक आता था चांदनी चौक में, ये आज तक की भी स्टोरी है। और व्हाइट चूड़ीदार और व्हाइट कुर्ता खत्म कुछ ही दिनों में। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना, विच इज संग बाय सुरेश वाडकर। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
5: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला ईरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो ईरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफकोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: कुछ कहता है।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: नहीं।
1: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और ये तो वही टाइम होता है जब आराम से गाड़ी में बैठते हैं, मैं और आप गाड़ी के शीशे नीचे करते हैं और ठंडी हवा के झोंके में लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जो दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, जो जानते हैं कि उनका जो दिल पर है यानी जिससे वो प्यार करते हैं या फिर जो उनसे प्यार करता है, वो उनकी एक हाँ सुनना चाहता है लेकिन वो बस उन्हें टीज करके चले जाते हैं, कभी मुस्कुरा के कभी नाराज़ होके, लेकिन दिल की बात जुबां पे नहीं लाते। ये गाना आज उन्हीं लोगों के लिए। ऑन दैट नोट दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। अगर आपको मुझसे वन टू वन ऐसे बात करनी है ना, या तो सिर्फ मैं बात करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एसएचआर श्रेया विद लव मेरा हैंडल है। गुड नाइट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.

0: हिंदी सिनेमा की पहली बैट कॉम
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओके इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। पैटकॉम का मतलब होता है पेट्रियोटिक कॉमेडी, और हिंदी सिनेमा की तरफ से ये पहली बार हो रहा है कि कोई पेट्रियोटिक कॉमेडी आ रही है। एंड द नेम ऑफ द मूवी इज उड़ता तीर बाबू मोशाय, जिसका ट्रेलर इज योर। एंड भाई साहब क्या ही बवाल ट्रेलर काटा है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आकाश कौशिक, इस फिल्म की स्टारकास्ट एक अलग ही वाइब है। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, मुकुल देव, राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, राहुल बोस, सुहेल नायर, ब्रिजेंद्र काला, मतलब ऐसे ऐसे एक्टर्स जिनको आपने इनके क्राफ्ट के लिए कई बार अप्रिशिएट किया होगा। एंड कहानी का बैकड्रॉप अगर आपको बताऊं तो भाई, एक पाकिस्तानी स्पाई है जो एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए इंडिया भेजा जाता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि भाई उसकी याददाश्त ही चली जाती है और वो बन जाता है भारत का अल्टीमेट लेवल देशभक्त। और इस चक्कर में जो ह्यू एंड क्राई क्रिएट होता है, जो सिचुएशनल कॉमेडी आती है, वो आपको ट्रेलर में जब इस लेवल पे गुदगुदा रही है, हंसा रही है, देन आई एम 110% श्योर कि 9th ऑफ अक्टूबर को जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी तो बवाल ही काट डालेगी। बाकी आपके क्या ओवरव्यूज हैं अबाउट दिस पैट कॉमेडी, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vizba la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine, fine, fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे 4 बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ, ट्यूसडे आप एक काम करो मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे सर, संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे
2: सर। संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
2: मैं पहले अपने ही निकाल
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट गाना।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, इस फिल्म की एडवांस बुकिंग तो ताबड़तोड़ चलती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली दृश्यम 3 बाबूमोशाय, जिसके एडवांस बुकिंग के हिसाब से ये फिल्म एक हिस्टोरिक 50-60 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रही है। माइंड यू, अभी तक इस मूवी की 90,000 से भी ज्यादा टिकट्स बिक चुकी हैं, विच एक्चुअली प्रूव्स दैट विजय सलगांवकर और उनके परिवार की ये जो कहानी है वो लोगों को काफी इंट्रीग करती आ रही है। ₹297.52 करोड़ का बिजनेस एंड काउंटिंग, मैं बात कर रही हूँ हनुमान अंश मूवी की, जिसने डे 52 पे अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में ₹1.61 करोड़ ऐड करते हुए अपनी कमाई के नंबर को बढ़ा दिया है एट ₹7.52 करोड़, एंड ये है रिकॉर्ड फॉर द 8th वीकेंड ऑफ द मूवी एट द बॉक्स ऑफिस। नो वंडर बहुत जल्द ये फिल्म 300 करोड़ मार्क भी पूरा कर लेगी। रवि किशन की सोलो लेड हिंदी फिल्म, जिसमें भगवान उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और ये एक क्लीन फैमिली ड्रामा होने वाली है विद जोक्स, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं महावीर जैन, जिसका बैकड्रॉप है स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अमित आर्यन। मूवी के बारे में बाकी की डिटेल्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: लाइफ के बोरिंग गेम्स को करो साइड लाइन और मेरे साथ बॉलीवुड गेम में करो शाइन।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड लाइक आई ऑलवेज से, हम हिंदुस्तानी जो है ना, उनके लिए एंटरटेनमेंट इज द कोर ऑफ आर लाइफस्टाइल। तो ऐसे में बॉलीवुड गेम खेलना तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। तो एक काम कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए एंड देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति, वहां मेरे DMs में स्लाइड इन करके अपना फोन नंबर मुझे भेजिए। आई विल गिव यू अ कॉल एंड वील गेट गोइंग विद द गेम। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी मैसेज कर रखा है, तो सबसे पहले मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है वीरेश अग्रवाल जी। सो आर यू रेडी टू प्ले दिस गेम सर?
3: अभी लेकिन इजी प्लीज।
0: बिल्कुल बिल्कुल इजी होगा। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, ये किस फिल्म का डायलॉग है?
3: शोले।
0: शोले के लंबे वाले हीरो का नाम क्या है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: अमिताभ बच्चन को किस फिल्म में पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था? ग्रेट। डॉन के रीमेक में लीड एक्टर कौन थे?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की किस फिल्म में उनको फेटल डिजीज होती है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं?
3: कल होना
0: हो। Awesome! कल होना हो की लीड एक्ट्रेस का नाम क्या है?
3: प्रीति जिंटा।
0: प्रीति जिंटा की किस फिल्म में एलियन आता है?
3: जादू। अरे कोई मिल गया।
0: कोई मिल गया की सीक्वल का नाम?
3: क्रिश।
0: क्रिश में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है? नहीं नहीं, यहाँ अटक गए आप। बट कोई बात नहीं, इतना अच्छा जो गेम खेला आपने, इसके लिए मैं आपको जरूर से बनाना चाहूंगी मिर्ची फिल्मची।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई, आप अगर आगे इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू नो द ड्रिल, मेरे इंस्टाग्राम ID पे जाइए और अपना नंबर मुझे भेजिए। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। Till then, stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: का कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या बनना चाहोगे मिर्ची फिल्मची?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो हर रोज की बात है, आज भी मैं ढूंढ रही हूँ एक ऐसा फिल्मची जो मेरे साथ खेलेगा एक बॉलीवुड गेम और फिर उसको मिलेगा ये टैग इफ इट ऑल ही और शी प्लेज द गेम वेल। सो ऑलरेडी इस गेम का एक राउंड हो चुका है जिसमें विरेश अग्रवाल गॉट स्टक एट अ पॉइंट जहां पे उन्होंने जवाब नहीं दिया ऑफ द क्वेश्चन कि भाई क्रिश मूवी में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है। तो इसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ है राजीव शर्मा। तो सर आपको इसका जवाब पता है?
3: ऋतिक रोशन किसका ही?
0: ऋतिक रोशन की मूवी जिसमें वो चोर बनते हैं,
3: धूम टू।
0: धूम टू में लंबे वाले पुलिस ऑफिसर का नाम क्या है?
3: लंबे वाले पुलिस ऑफिसर नाम तो वो है अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की वाइफ का नाम?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की मूवी जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ नजर आई है?
3: रणबीर कपूर के साथ नजर आई है दिल है मुश्किल।
0: ऐ दिल है मुश्किल में किसको कैंसर हो जाता है?
3: कैंसर जो होता है ये तो अनुष्का शर्मा को होता है।
0: अनुष्का शर्मा की मूवी जिसमें वो वेडिंग प्लानर बनी है?
3: अरे ये तो रणवीर सिंह के साथ है ना शादी मुबारक टेज जो है वो।
0: कौन सी
3: शादी मुबारक? शादी मुबारक नाम है, क्या नाम है?
0: शादी मुबारक उसका नाम पहले होने वाला था लेकिन फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया। बट कोई नहीं, इतना अच्छा जो गेम खेला है आपको भी मैं बनाना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: चलो यार जवाब मैं बता देती हूँ। सो अनुष्का शर्मा की फिल्म जिसमें वो वेडिंग प्लानर बनी है इज नन अदर देन बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात। वेल अपने इस गेम का सिलसिला कल फिर से जारी रखूंगी बट अभी के लिए एंजॉय दी अपकमिंग सॉन्ग राइटेड ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स ऑल।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: Wanna natural night? Do you feel alright? Wanna natural night?

0: Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep La fiertă la burga. Mici burga.
1: Hello?
2: Hello, Dr. Savita, Sevan Kradia.
1: Dr. Savita bol rahi hu.
2: Doctor, एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: ना एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा,
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
1: हाँ हाँ।
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
2: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सुमिता।
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही हूँ। देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा।
1: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: They say it can make or break a film.
1: Shruti, Shruti,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: Well, बाबू मोशाय, फिल्मों में गानों की जो अहमियत होती है वो एक इंडियन ही समझ सकता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इसके बिना बिल्कुल अधूरी है यार. हाँ ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए गाने जरूरी नहीं होते, फोर्स फिटेड होते हैं, बट यार इन जनरल गानों के बिना तो मूवीज इमेजिन ही नहीं कर सकते हम. इसीलिए आज पांच को पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों की बात चल रही है जो बॉक्स ऑफिस पे तो फ्लॉप साबित हुई, बट इसका साउंड ट्रैक हैपन टू बी अ सुपर डुपर हिट. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म करीब, जो 1998 में रिलीज हुई थी. अब नंबर दो पे बात करते हैं 2003 में रिलीज हुई फिल्म झनकार बीट्स के बारे में, जिसे सुजॉय घोष ने डायरेक्ट किया था. बाकी नॉट टू फॉरगेट टू मेंशन, विशाल शेखर के अमेजिंग डुओ ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इसी फिल्म के साथ अपना डेब्यू किया था भाई, which was an absolute delightful tribute to Pancham Da as well. भाई इस फिल्म के गाने लाइक सुनो ना या फिर तू आशिकी है, कुछ ऐसी मेलोडीज हैं जिनको हम शायद अपने सपने में भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इन गानों ने हमारे दिल में अपनी जगह बनाई है यार. तो चलो अब इसी प्यार को जरा आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं नंबर तीन पे फिल्म झूम बराबर झूम की, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाई शाद अली, जिसमें बहुत ही अमेजिंग एंसेंबल ऑफ स्टारकास्ट थे लाइक अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा, बॉबी देओल, लारा दत्ता एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली काजल लगाए हुए, बोहेमियन हैट पहने हुए अमिताभ बच्चन सर, बोले तो हमारे बिग बी. बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म कुछ खास काम नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन फिल्म का म्यूजिक भैया ओहो, शंकर एहसान लॉय ने तो आग ही लगा दी. अब वो इस फिल्म का टाइटल ट्रैक हो या फिर बोल ना हल्के हल्के या फिर टिकट टू हॉलीवुड या फिर किस ऑफ लव, किस ऑफ लव, ऑनेस्टली मुझे इस फिल्म के हर गाने रटे हुए हैं. एनीवे, अगर आप भी मेरी इस लिस्ट में कुछ एडिशन करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट. MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी. मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अगर इन फिल्मों के गाने नहीं होते ना तो शायद इनको कोई याद ही ना करता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाए, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं, मूवीज हैं, उसमें जो गाने, जो साउंड ट्रैक होता है, दैट इज रियली रियली रियली रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी वजह से या तो मूवी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है या फिर गुड़गुड़ गोते खाती है। बट हाँ, ऑन अ कॉन्ट्ररी, देयर हैव बीन फिल्म्स जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट उनके साउंड ट्रैक्स वर सुपर डुपर हिट। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी करीब, नंबर दो पे हमने झनकार बीट्स की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट झूम बराबर। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, नंबर चार पे अब बात करते हैं फिल्म अनवर की, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय मनीष झा। वेल, इस फिल्म में सिद्धार्थ कोयराला और नोहित साइरिसी लीड रोल्स में थे, एंड ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताती हूँ, इस फिल्म का प्लॉट मुझे तो ठीक ठीक अच्छा अच्छा लगा था, काफी सही ट्रीटमेंट था, बट उससे भी ज्यादा चुम्मेश्वरी वॉज द एल्बम यार। अब वो रूप कुमार राठौर की आवाज में मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे ओहो हो हो हो, या फिर शिल्पा राव की आवाज में तुसे नैना लागे पिया सावरे ओहो हो, अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ मैं कसम से। एनीवे, इस मूवी से आगे बढ़ते हुए नंबर पांच पे अब बात करते हैं फिल्म यादें की, जिसे सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था, एंड इट रिलीज्ड इन द ईयर 2001। बाकी फिल्म में म्यूजिक था अनु मलिक का, एंड भाई साहब अगर प्रॉपर मूवी की बात करें तो इट वॉज अ क्रिटिकल एंड कमर्शियल फेलियर, बट मूवी का साउंड ट्रैक वॉज अल्टीमेट गजब का ओहो हो हो हो टाइप्स। अब वो फिल्म का टाइटल ट्रैक हो या फिर ए ली रे ली या फिर जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले भाई साहब, तभी मैं कहती हूँ हम इंडियंस ना किसी फिल्म को बिना गानों के डाइजेस्ट नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली अगर वो फिल्म एक कमर्शियल मूवी हो तो। बाकी अगर आपको मेरी इस लिस्ट में कुछ और एडिशन करना हो देन फील फ्री टू डू दैट यार, MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइटेड ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, इस फिल्म की एडवांस बुकिंग तो ताबड़तोड़ चलती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली दृश्यम 3 बाबू मोशाय, जिसके एडवांस बुकिंग के हिसाब से ये फिल्म एक हिस्टोरिक 50-60 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रही है। माइंड यू, अभी तक इस मूवी की 90,000 से भी ज्यादा टिकट बिक चुकी है, विच एक्चुअली प्रूव्स दैट विजय सलगांवकर और उनके परिवार की ये जो कहानी है वो लोगों को काफी इंट्रीग करती आ रही है। ₹297.52 करोड़ का बिजनेस एंड काउंटिंग, मैं बात कर रही हूँ हनुमान अंश मूवी की, जिसने डे 52 पे अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में ₹1.61 करोड़ ऐड करते हुए अपनी कमाई के नंबर को बढ़ा दिया है एट ₹7.52 करोड़, एंड ये है रिकॉर्ड फॉर द 8th वीकेंड ऑफ द मूवी एट द बॉक्स ऑफिस। नो वंडर बहुत जल्द ये फिल्म 300 करोड़ मार्क भी पूरा कर लेगी। रवि किशन की सोलो लेड हिंदी फिल्म, जिसमें भगवान उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और ये एक क्लीन फैमिली ड्रामा होने वाली है विद जोक्स, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं महावीर जैन, जिसका बैकड्रॉप है स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अमित आर्यन। मूवी के बारे में बाकी की डिटेल्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों मिडवीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिडवीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज्यादा चाय पीता है और सबसे ज्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिडवीक में ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिड वीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिड वीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. La bala. Burga, burga. La vie de bala, burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
3: अरे बोल कौन रहा है
2: सर, ये वाला भेज दें बीप।
1: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
1: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
1: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: अरे बावले हो गए हो क्या?
2: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
1: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
1: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
1: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
1: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट सर, ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
1: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
1: अबे ओ पागल मारे, ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी एक म्यूजिकल थाली, क्योंकि छह अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए, इसी का एक गाना है सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों इसमें तो यार छह जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, 2007, इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारी सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियाँ थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलामे इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलामे इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक सलामे इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब ज़माना आता था ना कि जब कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा ही एक एल्बम था 2007 का, सलाम इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलाम इस टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का, तेनु लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पर अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनु मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला, जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम, तेनू लेके मैं जावांगा, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं। लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपनी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, DM मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है, जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनू लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

कोई भी इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली रेसिपी बनानी हो और इंडिया अगर फ़ोन करो मम्मी से रेसिपी पूछने के लिए, तो मेजरमेंट्स कभी भी कप में नहीं मिलते। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और देसी रेसिपी का फेवरेट मेजरमेंट होता है यार, अपने अंदाज से कर लो। मतलब अगर पूछो ना कि कितना पानी, तो बोलते बस थोड़ा, और यार थोड़ा मतलब बस कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए उतना। और फ्लावर तो यार जितना मन करे उतना। तो अगर आप न्यू जर्सी से किचन से

मेगाफोन्स पे स्पीकर में रख रहे हो तो समझ जाओ कि आप ऑलरेडी एक डिटेक्टिव बन चुके हो, क्योंकि यार वही तो मज़े की बात है। क्योंकि जो फैमिली रेसिपीज होती है ना, वो कभी रिटन इंस्ट्रक्शंस के साथ नहीं होती, स्लोली स्लोली इनहेरिट होती है। मतलब राइस फ्लावर निकले तो किसी के घर में डोसा या अप्पम याद आएगा, किसी के घर में चकली तो किसी के घर में फेस्टिवल स्नैक्स। रेसिपी अलग हो सकती है लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ वाली आवाज़ एकदम सेम होती है, जो कहती रहती है कि हाँ यार करते रहो, सब सही लग रहा है। तो नेक्स्ट टाइम वो फैमिली रेसिपी रिक्रिएट करनी हो तो पेंट्री में हीरो रेडी रखना डीप राइस फ्लावर, और आज ही डीप राइस फ्लावर ले आइए फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। यार बाकी मेजरमेंट अंदाज से मिल ही जाएगा, क्योंकि डीप खाओ तो जानो। तो चलिए रेसिपी मम्मी की, किचन आपका, और साउंड ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे इतने सारे गाने जहां बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ एक ऐसा एल्बम सलामी इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशंस इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप भी नहीं कर सकते, चाहे वो बाबूजी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी, जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की। मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पे डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज। और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट। तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की। वैसे यार ये गाना इतना ज़्यादा प्यारा है तो यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम। तो अभी मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो इस एल्बम का आपका कौन सा फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी, SIDDHI। और तब तक के लिए सलाम इश्क का मेरा दिल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vietva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine, fine, fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: दो। हाँ, तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ।
2: सर थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

दोस्तों, हर दिन न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर इकोनॉमी की इतनी बातें होती है ना कि कभी कभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतने सारे सोर्सेज से अपडेट्स इतने सारे मिलते रहते हैं, लेकिन हर अपडेट पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी तो ये समझना है कि वॉट रियली मैटर्स टू अस। तो अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स में घर भी शामिल है तो आज की बात आपके काम ज़रूर आ सकती है, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स और इतने सारे ऊपर नीचे जो मार्केट के हो रहे हैं, व्हाट दैट रियली मींस फॉर होम बायर, ये बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची का
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी InstaDRJMirchiSiddhi SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीधि चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों के जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम थ्री का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो डॉक्टर सविता से बात करा दिए।
3: तो सविता बोल रही हूँ।
4: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
3: क्या परेशानी है?
4: ना एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता।
3: तो वो तो भरता ही है।
4: नहीं जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
3: अच्छा।
4: ये बुढ़ापे में हो गया ना, पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
3: हाँ हाँ।
4: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
3: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
4: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
3: नहीं मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
4: नहीं
3: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
4: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
3: अच्छा।
4: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
3: अच्छा कभी लेकिन ना, मैं समझ रही हूँ।
4: हाँ क्या समझ रही
3: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
4: डॉक्टर सविता।
3: हाँ जी
5: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
3: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
5: बिल्कुल मैं कुकड़ू को बोलूंगा लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
3: कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

बॉलीवुड में हीरो सिर्फ प्यार ही नहीं निभाता, जिम्मेदारी भी निभाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और चाहे कभी खुशी कभी गम का राहुल हो, स्वदेश का मोहन, यार असली हीरो तो वही होता है जो अपनों के लिए हमेशा खड़ा रहे, कभी घर लौट कर तो कभी दूर रहकर भी, हर ज़रूरत का ख्याल रख के, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फ़ोन कॉल से ही नहीं चलती, कभी कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। और उस सपोर्ट का सबसे आसान तरीका होता है घर पर पैसे जल्दी और बिना टेंशन के पहुंच जाना, और इसीलिए टैप टैप सेट, यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में भेजिए इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स, ग्रेट एक्सचेंज रेट्स और जीरो ट्रांसफर्स फी के साथ, यानी नो वेट एंड नो हैसल। डाउनलोड द टैप टैप सेंड ऐप टुडे, सेंड मोर एंड स्पेंड लेस। और अब एक गाना जो अपनों की याद हमेशा दिला ही देता है, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

घर में चार लोग और चार अलग मूड्स हो तो ओटीटी चूज करना भी ना फैमिली मीटिंग बन जाती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और इस वीकेंड तो मीटिंग और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हिस्ट्री और एक्शन का मूड है तो द रिवॉल्यूशनरीज, जहाँ भुवन बम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह प्रजिता यंग फ्रीडम फाइटर्स की कहानी लेकर आ रहे हैं। क्राइम थ्रिलर चाहिए तो घमासान में अरशद वारसी और प्रतीक गांधी आमने सामने, और फैमिली के साथ कुछ हल्का फुल्का देखना है तो चुंबक में नीना गुप्ता, सुमित व्यास और देवन भोजानी के साथ कॉलोनी वाली कॉमेडी केओस लेकर रेडी रहने वाले हैं। मतलब यार एक स्क्रीन लेकिन मूड के हिसाब से तीन कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आप ओटीटी पर जॉनर चूज करते हो, स्टोरी देखते हो या कास्ट देखते ही प्ले का बटन दबा देते हो? जरूर बताना ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सुद्धि SIDDHI। और वैसे वॉच लिस्ट तो आप संभाल ही लेंगे, प्ले लिस्ट हम संभाल लेते हैं। अगला बॉलीवुड गाना मिर्ची पर, ओनली फॉर यू राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक सूटकेस में कितने सपने फिट हो सकते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई पढ़ने या करियर के लिए दूसरे देश जाता है ना, सूटकेस में कपड़े कम होते हैं लेकिन उम्मीदें ज़्यादा होती है। हर फ्लाइट एक नई बिगनिंग लेकर उड़ती है। और अगर आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है और हेल्थ केयर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो एम्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए F1 वीज़ा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर I-20 इशू की जा सकती है। एक्सप्लोर कीजिए सर्जिकल, MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीशिया और न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज के AAS डिग्री प्रोग्राम्स। और साथ ही रेप्यूटेड मेडिकल सेंटर्स में अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जो देते हैं रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज ही विजिट कीजिए aimseducation.edu। एम्स एजुकेशन, स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड। और चलिए, सपनों की बातें हो रही है तो सपनों से भरा ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी किसी एक्टर को देख के लगता है कि यार ये एक्टर तो हर जगह है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और ओटीटी दुनिया का ना अलग ही मजा है। एक हफ्ते ये कोई एक्टर थ्रिलर में दिख जाता है तो अगले हफ्ते कॉमेडी में, और फिर किसी दूसरी सीरीज में बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर होता है। जैसे अभिषेक बैनर्जी को ही देख लीजिए, कभी एक सीरियस रोल में आपको डरा देते हैं तो कभी कॉमेडी से हंसा देते हैं, तो कभी इतना डिफरेंट कैरेक्टर निभाते हैं कि 2 मिनट बाद याद आता है कि अरे ये तो वही एक्टर है। तब समझ आता है कि असली एक्टिंग ना सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता, हर बार अपनी पहचान छुपाना भी होता है और नई पहचान को अपनाना भी होता है। और कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम देखते ही लगता है कि अच्छा, इनको देख लिया अब तो कहानी में दम होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी बताइए कि ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि यार ये तो हर जगह है और अब कहानी में तो दम होने वाला है। DM ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए अब मिलते हैं ऐसे बॉलीवुड गाने से जो हर मूड में बिल्कुल नेचुरली फिट हो जाता है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: दिस इज रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन यार टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ, ट्यूसडे आप एक काम करो मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसी कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर, मंगलवार को 7 बजे थोड़ा मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताइए।
2: पहले अपने ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: कभी नोटिस किया है, कुछ गाने ना सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और जैसे ही मिर्जापुर का नाम सुनते हैं ना, दिमाग में सबसे पहले गन्स, बौकाल, पावर गेम्स, रिवेंज, यही सब आता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गाना है जो बिल्कुल उल्टा एहसास देता है। जी हाँ, वारू फॉरएवर। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गाना ओरिजिनल यानी वारू उसका नया वर्जन है, जो फैंस के बीच इतना ऑर्गेनिकली पॉपुलर हो गया कि यार मेकर्स ने उसे फिल्म के लिए दोबारा लाया, और इस बार श्रेया घोषाल और रोमी की आवाज ने उस इमोशन को और भी गहरा बना दिया था। कंपोजर आनंद भास्कर और लिरिसिस्ट जिनी दीवान ने उसी रूह को एक नई कहानी के साथ फिर से जिंदा किया था। और शायद यही वो बात है कि यार वारू फॉरएवर ना इतना अलग लगता है, लेकिन फिर भी अपना सा लगता है, क्योंकि मिर्जापुर की इतनी वॉयलेंट दुनिया में भी ये गाना याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है। तो कभी कभी सबसे लाउड कहानियों के बीच सबसे खामोश गाने ही दिल में घर बना देते हैं। तो चलिए, अगर आज का दिन थोड़ा स्लो है या बस 2 मिनट की सुकून की तलाश है, तो ये गाना शायद आपकी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बना ले। सुनते हैं वारू फॉरएवर, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

लिए टाइम पास करना भी एक आर्ट होता है। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ लोग 10 मिनट में बोर हो जाते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल को भी एंटरटेनमेंट बना देते हैं। मतलब सोचिए ना, वेटिंग रूम में, ग्रोसरी लाइन हो या किसी को पिक करने जाना हो, और सडनली 15 मिनट फ्री मिल जाते हैं तो कोई रील्स खोलता है, कोई पीपल वॉचिंग शुरू करता है, कोई रैंडम ओल्ड फोटोज देखने लगता है, और कुछ लोग तो यार गाड़ी में बैठ कर ही फुल बॉलीवुड कॉन्सर्ट कर लेते हैं। तो मुझे तो लगता है हर इंसान का ना अपना सिग्नेचर टाइम पास होता है। तो मुझे जरूर बताइए कि आपका जीरो बजट इंस्टेंट टाइम पास क्या है, म्यूजिक, चाय, पीपल वॉचिंग या बस रील स्क्रोलिंग। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए आज के टाइम पास को थोड़ा क्लास दे देते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड ट्रैक के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।